0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है।
0: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिथम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेटा की ग्लोबल टीम से अगले सप्ताह के मध्य में पूछताछ होने की संभावना है। टीम को संसदीय समिति के समक्ष भी पेश होना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे। यहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। मंत्रिमंडल ने 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय युवा विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए खेलों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से बात कर उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। कल सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान दोनों नेता प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और जनधन संबंधों जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करने और भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर सहमत हुए। दिल्ली सरकार ने बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा का लाभ उठाने के

0: हसरत जयपुरी का लिखा गीत, रविंद्र जैन का संगीत, राम तेरी गंगा मैली फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में सुन साहिबा सुन। और इसी के साथ शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुहानी सुबह। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आपकी होस्ट पूजा, रहेगा हमारा साथ पूरे 8 बजे तक। फिलहाल 7:06:19। ट्यून किया है आपने 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी कोलकाता का FM गोल्ड चैनल।
1: सुबह की शुरुआत आपके साथ, सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
0: कार्यक्रम में अगली आवाज अनवर और सुलक्षणा पंडित की। सुनते हैं फिल्म थोड़ी सी बेवफाई से गुलजार का लिखा गीत, खयाम के संगीत निर्देशन में।

सपने से जाग जाइए, क्योंकि शुरू हो चुका है कार्यक्रम सुहानी सुबह और आपका घर फूलों के शहर में नहीं बल्कि सिटी ऑफ जॉय में है। सुना हमने लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में फिल्म लव स्टोरी का गीत आनंद बख्शी के लिखे बोल को संगीत से सजाया आड़ी बर्मन ने। और अगर बात हो रही है फूलों की, तो फूल खुश हो जाते हैं, हर पत्ता नहा धोकर मुस्कुराने लगता है जब मौसम हो बारिश का। और स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे भी आसमान में बादल छाए रहेंगे, हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना बनी रहेगी और कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ भी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। बात करें अगर गुजरे कल की, तो 33 डिग्री यानी कि सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक रहा अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री जिसे रहना था वो रहा 28 डिग्री से 1.4 डिग्री अधिक। उच्च आर्द्रता 94%, निम्न आर्द्रता 65%। ये तो हुई बात हाले मौसम की। अब रुक करते हैं अगले गीत का, सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म कुर्बानी का गीत, इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: सुहानी सुबह में अगर बात करें आज के दिन की, यानी कि 1 अगस्त की, तो 1 अगस्त को माँ के दूध के महत्व और बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे कहीं कहीं सप्ताह और कहीं कहीं पखवाड़े के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है जन जागरूकता के लिए। माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य की नीतियों के लिए, क्योंकि एक स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज की निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकता है। और स्वस्थ नागरिक के स्वास्थ्य की शुरुआत होती है माँ के गर्भ से, वह पोषित होता है माँ के स्तनपान से। फेफड़े के कैंसर के कारणों और इसके बचाव के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए आज का दिन तय किया गया है। 1 अगस्त का दिन तय किया गया है। आज मनाया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस। हम स्वस्थ होंगे तो हम में रोमांच होगा, और पर्वतारोहण से अधिक रोमांचकारी शायद ही कुछ हो। आज का दिन उन सभी पर्वत प्रेमियों को समर्पित है जिन्हें पर्वत बुलाते हैं, जो पर्वतों पर चढ़ना पसंद करते हैं। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है, रोमांचक खेलों को और पर्वतारोहियों के साहस को सम्मान देने के लिए आज का ये दिन मनाया जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं 2 और 2 कितने होते हैं, तो आप सीधा सा जवाब देंगे 2 और 2 4 होते हैं। अगर हम घटा दें तो 0 होते हैं। लेकिन अगर हम किशोर कुमार से पूछें तो क्या कहेंगे वो, क्या होगा उनका जवाब? आइए सुनते हैं अगले गीत में, फिल्म 2 और 2 5 से, अनजान का लिखा गीत राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में।
1: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

बात करें अगर आज के दिन जन्मे लोगों की, तो शुरुआत करेंगे भारतीय मुक्केबाज से, रोहित टोकस। आज के दिन वर्ष 1993 में हुआ जन्म। वर्ष 1957 में रामवीर उपाध्याय उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास स्थान रखने वाले राजनीतिज्ञ का जन्म हुआ। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण लाल का जन्म 1 अगस्त 1955। गोवा के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक व निबंधकार दामोदर माउजो का जन्म हुआ वर्ष 1944 में, और प्रसिद्ध साहित्यकार गोविंद मिश्र का जन्म हुआ वर्ष 1939 में। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद निसार का जन्म हुआ था आज ही के दिन वर्ष 1910 में। स्वतंत्रता सेनानी पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्म हुआ था वर्ष 1882 में आज ही के दिन, और वर्ष 1869 में आज ही के दिन जन्म हुआ था हरकोर्ट बटलर का। आप स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं फिल्म निर्माता निर्देशक भगवान दादा का जन्म आज ही के दिन हुआ था वर्ष 1913 में, और 1 अगस्त जन्म हुआ था ट्रेजेडी क्वीन, बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन।

मीना कुमारी का वर्ष 1932 में। तो आइए सुन लेते हैं मीना कुमारी पर फिल्माया गया गीत, गीता दत्त की आवाज में, फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से, शकील बदायूनी का लिखा गीत, हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में।

मीना कुमारी पर फिल्माए गए इस गीत के बाद सुन लेते हैं भगवान दादा पर फिल्माया गया गीत। लता मंगेशकर चितलकर और साथियों की आवाज में फिल्म अलबेला से राजेंद्र किशन का लिखा गीत सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में।

कवियों की कल्पनाओं से इतर अगर दिल की बात करें तो दिल की धड़कनों को स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित व्यायाम और सही खान पान से जुड़े रहना होगा। दिल की धड़कनें सिर्फ महबूब के आवाजाही के सूचना के काम नहीं आती, बल्कि उनका काम है हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखना। और शरीर स्वस्थ में ही स्वस्थ दिल धड़क सकता है। साथ ही साथ बता दूं आपको, देश में पहली बार एक दिल को ट्रांसप्लांटेशन के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत से अहमदाबाद लाया गया। इसके लिए पहले अस्पताल से स्टेशन तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इसके बाद हार्ट को अहमदाबाद के अस्पताल में पहुंचाया गया। सूरत से अहमदाबाद की 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में वंदे भारत ने करीब 217 मिनट का वक्त लिया।

जिसके लिए रेलवे, गुजरात पुलिस, आरपीएफ और मेडिकल टीमों को ढेर सारी बधाई। और भारत में इस तरह के विकास का स्वागत। स्वस्थ दिल, स्वस्थ धड़कन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ दिमाग तो स्वस्थ वातावरण। और खेल हमारे स्वास्थ्य की कुंजी है। खेलों से जुड़े रहिए। और कॉमनवेल्थ गेम्स में कल मात्र 15 मिनट में एक नहीं बल्कि 2 गोल्ड हमने कर लिया अपने देश के नाम। पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में हर्ष सिंह ने हासिल किया गोल्ड और महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में जुडोका हर्षित अस्मिता दे ने किया गोल्ड अपने नाम। और अस्मिता का यह गोल्ड ऐतिहासिक है क्योंकि इससे पहले भारत की ओर से किसी भी जुडोका ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड नहीं जीता था।

कार्यक्रम सुहानी सुबह, अगली आवाज अनूप जलोटा और लता मंगेशकर की। आनंद बख्शी का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, फिल्म एक दूजे के लिए से।

कार्यक्रम सुहानी सुबह अपने आखिरी मोड़ तक पहुंच चुका है। आपसे विदा लेने से पहले, आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने से पहले बता दूं आपको कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है भारत में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य विभाग मिलकर इस सप्ताह के दौरान नवजात शिशु और स्वास्थ्य पोषण को लेकर देश भर में विशेष जागरूकता अभियान चलाते हैं। लेकिन कोई भी अभियान सिर्फ एक दिन का नहीं है, हमें प्रतिदिन प्रतिपल जुड़े रहना होगा, तभी संभव है स्वस्थ भारत को स्वस्थ बनाए रखना। दीजिए आज्ञा, आज के इस कार्यक्रम सुहानी सुबह से अपनी दोस्त अपनी होस्ट पूजा को होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात इसी चैनल पर 11:10 पर। सुनते रहें, साथ बने रहें। अगला कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही देर में।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई

0: रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर, वे वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। भारत ने ईरान से किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंड का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट्रैक अदालत स्थापित करने की आवश्यकता है। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
2: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूर सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसे पावर ग्रिड द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा लगभग 5,550 करोड़ रुपए के निवेश से कार्यान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री लगभग 3,550 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित कुर्नूल पवन ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा क्षेत्र भाग ए और भाग बी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। वे अनंतपुरम में 2,500 मेगावाट और कुर्नूल में 1,000 मेगावाट के सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए पावर ग्रिड द्वारा 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यान्वित ट्रांसमिशन सिस्टम का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
4: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
5: पहले चरण में नागरिक आज से 15 अगस्त तक आधिकारिक जनगणना पोर्टल sec.census.gov.in पर अपनी जानकारी देकर सेल्फ इन्यूमरेशन करने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस चरण का दूसरा भाग 16 अगस्त से 14 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी मकान सूचीकरण और शुरुआती गिनती के लिए घरों का दौरा करेंगे। आखिरी चरण अगले साल फरवरी में होगा, जब जनगणना करने वाले कर्मचारी वास्तविक जनसंख्या गणना के लिए प्रत्येक घर के हर सदस्य के नाम, उम्र, लिंग, जाति और धर्म के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
3: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डेकाथलॉन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर एथलीट तेजस्विन शंकर को बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद कनक। जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माता के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों के लिए श्री मोदी का बयान अनेक अखबारों की हेडलाइन है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर कहा, हमें इन गुमराह बच्चों को माफ करना चाहिए। पत्र ने अंदर के पृष्ठ पर आप बीती शीर्षक से छात्रों के प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों का वक्तव्य दिया है, वर्दी के पीछे भी एक परिवार होता है। दैनिक भास्कर ने परिजनों की पीड़ा का उल्लेख किया है, पिता को भीड़ ने खींचा, खून से सनी वर्दी में घर लौटे। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 को उम्र कैद की सजा की खबर भी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण लिखता है, अदालत ने कहा, अंकित शर्मा की हत्या इतनी क्रूर और बर्बर कि समाज के अंतर आत्मा को झकझोर देती है। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है, अदालत के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीदें बंधी। दंगों में धर्म के नाम पर आम लोगों को निशाना बनाया गया, जिसके जख्म आज भी हरे हैं। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार तो है, पर इसकी आड़ में उपद्रव फैलाने की छूट किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। कुलगांव में आतंकी हमला, दस्तूर की मौत नवभारत टाइम्स के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है कश्मीर में आतंकियों के नाम पूछकर बरसाई गोलियां, प्रवासी की मौत, टीआरएफ ने ली जिम्मेदारी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल को जूडो में पदक मिलने की अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है जूडो में अस्मिता हर्ष की स्वर्ण गाथा, जीते दो गोल्ड मेडल। अमर उजाला ने हर्ष सिंह और अस्मिता का चित्र देते हुए लिखा है 92 साल में पहली बार देश को जूडो में स्वर्ण, पहली बार जिंदा दिल लेकर दौड़ी वंदे भारत, लोक सत्य में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं। वीडियो संदेश में कहा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए युवाओं को दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर। भारत ने कहा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता के खिलाफ जनता की कड़ी नाराजगी का प्रमाण। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth. Says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill, introducing stricter punishment and setting up of fast-track courts.

0: पहले नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक बृहस्पतिवार को संसद से पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा है और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती है और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।

सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि POJK में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। डेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं के 57 किलोग्राम जूडो प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में महिलाओं के 57 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में यामिनी को बधाई देते हुए कहा कि जूडो के प्रति यामिनी का जुनून उनके प्रदर्शन में स्पष्ट रूप से झलका। पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया 2 चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। 2 चरणों वाली ये प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक बृहस्पतिवार को संसद में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। यह अधिनियम विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा करते हुए एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार करके परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया, जहां उनके और उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि इस घटना को देश और दुनिया के लोगों ने देखा और समाज में इस तरह के व्यवहार पर आक्रोश और निराशा स्वाभाविक है, लेकिन बचपन सीखने, गलतियां करने और उन्हें सुधारने का भी एक दौर है।
1: बचपन में गलतियां होती हैं,

0: और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ, समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे। मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूर पहुंचेंगे, जहां वो स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। यह प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से संपन्न की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से अद्यतन जनसांख्यिकी आंकड़े एकत्र करना है। दो चरणों वाली यह प्रक्रिया राज्य में व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीओजेके में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। इस बीच तेजस्विन शंकर ने डेकेथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 57 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर यामिनी मौर्य को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। हीराकुंड जलाशय का जलस्तर बढ़कर 625 फीट के ऊपर पहुंच चुका है। जल नियंत्रण के लिए 22 गेट खोले गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Andhra Pradesh and Karnataka today. Mr. Modi will first travel to Andhra Pradesh, where he will lay the foundation stone, inaugurate and dedicate to the nation multiple development projects worth nearly 18,000 crore rupees at Bhogapuram in Vizianagaram district. In Karnataka, Prime Minister Modi will inaugurate Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak at Mysuru in Karnataka today. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion towards misguided youth who have gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and in national interest rather than punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incident at Jantar Mantar in national capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said the episode had been witnessed by people across the country and the world, adding that while the anger and disappointment in society over such conduct were understandable, childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
0: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। एक गुमराह बच्चे हैं,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर बल प्रयोग के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव पर भारत ने चिंता व्यक्त की। ईरान से वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न करने को कहा। भारत और चीन के बीच सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते आज से फिर सीमा व्यापार शुरू। इटली ने स्यूटा प्रवासी संकट के कारण स्पेन के साथ मुक्त सीमा बंद की। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर बल प्रयोग के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि POJK के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से इन घटनाओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार

0: निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में तथा कथित चुनाव के खिलाफ जारी प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारने का प्रमाण है। रूस की सेना में शामिल भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि अब तक 139 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है और करीब 24 अन्य भारतीयों को वापस लाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने लोगों को फर्जी नौकरी के प्रस्तावों से भी सावधान रहने की सलाह दी। अमेरिका से भारतीय नागरिकों के निर्वासन के बारे में प्रवक्ता ने बताया कि इस वर्ष अब तक 1260 भारतीयों को वापस भेजा गया है। पिछले वर्ष ये संख्या 3567 थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से फोन पर बात कर पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। डॉ जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने देने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्हें चल रहे घटनाक्रम और चर्चाओं के संबंध में ईरान के दृष्टिकोण से भी अवगत कराया गया। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत हमेशा संवाद और कूटनीति का समर्थक है। भारत और चीन के बीच आज सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा व्यापार फिर से शुरू हो रहा है। कोविड के कारण 2020 से दर्रे से होकर सीमा पार व्यापार निलंबित था। सीमा पार व्यापार को इससे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे पंजीकृत व्यापारियों, परिवहन संचालकों और संबंधित व्यवसायों को लाभ होगा। नाथुला के माध्यम से व्यापार 4 दशक से अधिक समय तक निलंबित रहने के बाद 2006 में दोबारा शुरू हुआ था। विदेश सचिव विक्रम मिश्री भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा के बाद कल स्वदेश लौट आए। इस दौरान श्री मिश्री ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने भारत सरकार द्वारा दिए गए 10,000 करोड़ रुपए के समर्थन की समग्र प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा की। कुल 12 नई योजनाबद्ध सहायता परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनकी कुल लागत 332 करोड़ रुपए है। एक रिपोर्ट।
2: ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शहरी सुविधाएं और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को कवर करती हैं। विदेश सचिवों ने भूटान और भारत के एक्जिम बैंक के बीच अम्ब्रेला लाइन ऑफ क्रेडिट समझौते के बारे में भी बात की, जिसके तहत भूटान में ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए की रियायती लाइन ऑफ क्रेडिट को चालू किया जाएगा। दोनों देशों के बीच अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान नई दिल्ली और भूटान के खेसर ग्यालपो आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण पर अनुसंधान और सहयोग के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश सचिव मिस्त्री ने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री शेरिंग तोगपे और विदेश व्यापार मंत्री ल्योम्पो डी एन घुंगेल से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार और निवेश संपर्क, जन जन संबंधों के साथ साथ पारस्परिक महत्व के अन्य क्षेत्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार के लिए मृगनयनी पांडे।
1: उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार उर्लोविच कल से 4 दिन की यात्रा पर भारत आएंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। साथ ही नई दिल्ली में आयोजित व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। मोरक्को से स्पेन के सेउटा एनक्लेव में प्रवासियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर इटली ने स्पेन के साथ मुक्त सीमा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इससे हवाई और समुद्री यातायात प्रभावित होगा और स्पेन की शेंगेन सीमा मुक्त यात्रा व्यवस्था भी अस्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इसके माध्यम से 29 यूरोपीय देशों में स्वतंत्र रूप से यात्रा की जा सकती थी। एक रिपोर्ट।
3: इटली की विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कल इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इटली की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यूरोपीय संघ की बाहरी सीमाओं की रक्षा के लिए स्पेन के साथ शेंगेन समझौते का अस्थायी निलंबन आवश्यक था। ताजानी के अनुसार मोरक्को से हजारों प्रवासियों के सेउटा में प्रवेश करने के

0: आदि कदम आवश्यक हो गया। उन्होंने कहा कि यह कदम यूरोपीय संघ के नियमों के अंतर्गत अनुमत है और आज से एक महीने तक लागू रहेगा। इस बीच स्यूटा से 48,000 से अधिक प्रवासी मोरक्को लौट चुके हैं, जहां हाल के दिनों में लगभग 60,000 लोग पहुंचे थे। स्पेन और मोरक्को ने स्यूटा में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले सभी प्रवासियों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए उपायों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। स्पेन के गृह मंत्री फर्नांडो ग्रैंडे मार्लस्का ने कहा कि दोनों देश स्थिति को संभालने और सीमा नियंत्रण बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विश्व दर्पण के लिए नवीन सक्सेना।
1: ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला होता है तो वह पश्चिम एशिया में स्थित इसराइल के प्रमुख बुनियादी ढांचे और अमेरिका की ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करेगा। ये चेतावनी ऐसे समय में आई है जब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ठिकानों पर संभावित नए हमलों की तैयारी के आदेश दिए हैं। रूस ने कल रात यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसमें 3 लोग मारे गए और 12 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हमला रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले के 2 दिन बाद हुआ। इसमें 10 नागरिक मारे गए थे और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने कल जूडो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार डबल पोडियम फिनिश हासिल की। टेकाथलॉन में पहला कांस्य पदक जीता और 10 मुक्केबाजों ने अपनी अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। एक रिपोर्ट।
2: अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में भारत के लिए पहले राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता ने महिलाओं का 48 किलोग्राम वर्ग का खिताब जीता, जबकि हर्ष ने पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में 85.83 मीटर के साथ रजत पदक जीता, जबकि यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर के थ्रो के कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर डेकाथलॉन में कांस्य पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत अब कुल 23 पदक के साथ तालिका में 10वें स्थान पर है, जिसमें 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बर्बर बल प्रयोग के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव पर भारत ने चिंता व्यक्त की। ईरान से वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न करने को कहा। भारत और चीन के बीच सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते आज से फिर सीमा व्यापार शुरू। इटली ने स्यूटा प्रवासी संकट के कारण स्पेन के साथ मुक्त सीमा बंद की और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। जूडो में 2 स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में यादगार दोहरा पोडियम स्थान हासिल किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good morning. This is Akashvani and I am Naresh Mago with the World News. The headlines. New Delhi calls upon international community to hold Islamabad accountable for ruthless use of force against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Border trade between India and China through Nathula Pass to resume in Sikkim from today. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis. And at Commonwealth Games, India clinched 2 historic gold medals in judo, secured double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. India has said the so-called elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK stand as a humiliating rejection of the Pakistani establishment. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, Pakistani establishment continues to unleash ruthless force against peaceful civilians in POJK. He said the crackdown has resulted in the tragic death of over 40 civilians and serious injuries to many. The spokesperson said,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड हैं। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी पहले आंध्र प्रदेश जाएंगे, जहां वे विजयनगरम जिले के भोगपुरम में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापत्तनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही ASIP सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी कुर्नूल 4 नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के एकीकरण के लिए 4.5 गीगावाट क्षमता वाले ट्रांसमिशन सिस्टम के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। श्री मोदी 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथ

0: आलय ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहां शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सोशल मीडिया कंपनी मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। उनसे ग्लेरिटम में पूर्वाग्रह और सार्वजनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका से संबंधित मुद्दों पर पूछताछ की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से जनगणना शुरू हो रही है। ये प्रक्रिया दो चरणों में डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से ताजा जनसांख्यिकीय आंकड़े एकत्र करना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकाथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जूडो खिलाड़ी यामिनी मौर्य को महिलाओं के 57 किलोग्राम जूडो प्रतिस्पर्धा में रजत पदक हासिल करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

एक गीत और एक नहीं कई रातें गुजार देना। फिल्म पाकीज़ा का गीत, कैफी आज़मी के बोल, गुलाम मोहम्मद का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और अदाकारी मीना कुमारी की। कुछ रातें कभी नहीं ढलती, कुछ रातें ढल कर भी अमर हो जाती हैं। कुछ रातें कुछ शामें शायद कभी न ढलने के लिए ही बनी होती हैं। पूछ लेते हैं रात के मुसाफिर से, राजेंद्र किशन का लिखा गीत, हेमंत कुमार के संगीत, निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म मिस मैरी से। कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद, और कार्यक्रम में आज हमारी दोस्त हैं मीना कुमारी। इस सफर की हम सफर हैं मीना कुमारी। याद कर रहे हैं आज हम मीना कुमारी को।

भारतीय सिनेमा में जब भी संवेदनशील अभिनय, दर्द से भरी आंखें, भावनाओं को शब्द से अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने वाली अभिनेत्रियों की बात होगी तो उसमें शामिल होगा ऊपर की पंक्ति में नाम मीना कुमारी का। तभी तो उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा गया। उनकी जिंदगी सफल और चमकदार पर्दे पर जैसी दिखाई देती थी, निजी जीवन उससे बिल्कुल अलग, अकेला, संघर्षपूर्ण और दर्द से भरा। शायद यही कारण है कि उनके चेहरे की उदासी और आंखों का दर्द अभिनय नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की सच्चाई था, तभी लोगों के दिलों तक पहुंच चुका। 1 अगस्त 1933 को मुंबई में जन्मी मीना कुमारी, वास्तविक नाम महजबी बानो, पिता अली बख्श रंगमंच के कलाकार और संगीतकार थे, जबकि माता इकबाल बेगम थिएटर से जुड़ी हुई थीं। आर्थिक तंगी के कारण परिवार को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि जन्म के समय आर्थिक संकट इतना गहरा था कि परिवार उन्हें अनाथालय में छोड़ने तक को मजबूर हो रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें वापस घर ले आया गया। यही संघर्ष उनके जीवन की पहली कहानी बन गया। मात्र बहुत ही छोटी 4 साल की उम्र में महजबी ने फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम करना शुरू किया। फिल्म लेदर फेस में उन्हें पहली बार पर्दे पर देखा गया। निर्देशक विजय भट्ट ने उनका नाम बदलकर बेबी मीना रखा, जो आगे चलकर मीना कुमारी बन गया। बचपन से ही अभिनय उनके जीवन का हिस्सा और साथ ही साथ परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों का एक साधन।

मन बना हुआ था। सुनते हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में बैक टू बैक दो गाने। लता मंगेशकर की आवाज में सुनेंगे भाभी की चूड़ियां से पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा गीत, सुधीर के संगीत निर्देशन में, और आशा भोसले की आवाज में सुनेंगे फिल्म काजल से साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, रवि के संगीत निर्देशन में। कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद, आकाशवाणी कोलकाता का FM गोल्ड चैनल।

बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

बिल्कुल सटीक ये लाइनें मीना कुमारी के लिए, अंदर का दर्द चेहरे पर छलकता झलकता। बचपन से ही फिल्मी पर्दे पर नजर आने वाली बेबी मीना ता उम्र जुड़ी रही रुपहले पर्दे पर, रुपहले पर्दे से। कारण कुछ भी रहा हो, प्रेम, आर्थिक तंगी, लेकिन अपने दर्शकों के दिल पर दस्तक देती रही अपनी बेहतरीन अदाकारी से। वर्ष 1992 में आई फिल्म बैजू बावरा ने उनकी किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उनके अभिनय को दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराहा। इसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। इसके बाद उन्होंने सफलता की ऐसी उड़ान भरी कि वे हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं। बात करें अगर उनकी प्रमुख फिल्मों की तो परिणीता, दिल अपना और प्रीत पराई, साहिब बीवी और गुलाम, दिल एक मंदिर, काजल, फूल और पत्थर, पाकीजा विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हर फिल्म में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए जो आज भी भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हैं। आइए सुनते हैं बैजू बावरा से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में इस गीत को।

जब बात करते हैं मीना कुमारी की, तो मीना कुमारी केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक बेहद संवेदनशील शायरा भी थी। वे नाज उपनाम से शायरी लिखा करती थी। उनकी रचनाओं में प्रेम, विरह, अकेलापन और जीवन का दर्द साफ झलकता था। उनके लिखे कई शेर आज भी साहित्य प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। अभिनय और कविता दोनों ही उनके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा था। आइए सुनते हैं मीना कुमारी की लिखी गजल मीना कुमारी की आवाज में, जिसे संगीत से सजाया है खयाम ने।

वर्ष 1952 में मीना कुमारी ने प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही से विवाह किया। शुरुआती दिनों में दोनों का रिश्ता बेहद खूबसूरत था, लेकिन समय के साथ मतभेद बढ़ते गए। काम व्यस्तता और निजी परिस्थितियों ने इस रिश्ते में दूरियां पैदा कर दी। अंततः दोनों अलग हो गए। इस टूटन से मीना कुमारी भीतर तक टूट गईं। इस रिश्ते के अलगाव ने मीना कुमारी को झकझोर कर रख दिया। वे गहरे अकेलेपन में डूब गईं।

जब खुलती है उल्फत की गांठ तो गहरे तक घाव कर जाती है। जीवन के अंतिम वर्षों में मीना कुमारी को शराब की लत लग गई। लगातार काम, मानसिक तनाव और निजी जीवन की परेशानियों ने उनके स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित किया। लीवर से संबंधित गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गई मीना कुमारी। उसके बावजूद अपने काम के प्रति उनका समर्पण कम नहीं हुआ। अपनी अधूरी फिल्म पाकीज़ा को पूरा करना चाहती थी। लंबे समय तक रुकी रही

जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था वो वक्त जब 1972 में रिलीज हुई फिल्म पाकीज़ा। फिल्म के गीत चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, इन्हीं लोगों ने ठाड़े रही हो आज भी सदाबहार माने जाते हैं। विडंबना यह रही कि जिस फिल्म को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उनकी ऐतिहासिक सफलता देखने के कुछ ही सप्ताह बाद वे इस दुनिया को अलविदा कह गई। 31 मार्च वर्ष 1972 को मात्र 38 वर्ष की आयु में मीना कुमारी का निधन हो गया। उनकी असामयिक मृत्यु ने पूरे फिल्म जगत को शोक में डुबो दिया। बाद में पाकीज़ा ने अपार सफलता हासिल की और यह फिल्म भारतीय सिनेमा की कालजयी कृतियों में गिनी जाने लगी। अपने करियर में मीना कुमारी ने लगभग 90 फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार प्राप्त हुए। कई बार पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। अभिनय में भावनाओं की गहराई, संवाद की अदायगी और आंखों से अभिनय करने की उनकी कला आज भी कलाकारों के लिए प्रेरणा है। आइए सुनते हैं मीना कुमारी पर फिल्माया गया फिल्म चित्रलेखा का गीत। प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा की उपन्यास पर आधारित फिल्म चित्रलेखा के लिए गीत के बोल लिखे हैं साहिल लुधियानवी ने और संगीत रोशन का।

ईश्वर की अद्वितीय रचना मीना कुमारी कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में आज हमारे साथ बनी रहीं। आज के लिए कार्यक्रम यहीं तक। मीना कुमारी अपने दर्द को अभिनय और शायरी में ढालकर अमर कर गईं। इसलिए आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो अनायास ही उनके जीवन की कहानी पर उन्हीं के फिल्म के एक गीत की पंक्ति याद आ जाती है। अजीब दास्तां है ये, कहां शुरू कहां खत्म। ऐसा लगता है कि मानो ये पंक्ति उनकी पूरी जिंदगी का सबसे सटीक परिचय हो। तो चलिए श्रद्धांजलि स्वरूप इसी गीत को सुनते हैं और आज के इस कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद का करते हैं समापन। सुनते रहें, साथ बने रहें। आज्ञा दीजिए अपनी दोस्त अपनी होस्ट पूजा को। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश में विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसे 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने प्रधानमंत्री को हवाई अड्डे की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी दी। श्री मोदी आज राज्य में लगभग 18,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
1: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फीथिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहां शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति की जब्ती जैसे कठोर दंड शामिल हैं। इसमें यह भी अनिवार्य है कि प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर अपराधों की जांच पूरी की जाए, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अभद्र भाषा और नफरत से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने भटके हुए युवाओं के प्रति सहानुभूति दिखाने की अपील की और कहा कि राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें दंडित करने के स्थान पर सही राह दिखाई जानी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने राजधानी के जंतर मंतर पर हुई हाल की घटना का जिक्र किया। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव

0: श्रृंखला बनाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से फोन पर बातचीत की और पश्चिम एशिया क्षेत्र में जारी तनाव पर चिंता व्यक्त की। श्री जयशंकर ने किसी भी परिस्थिति में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमले न होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे किसी भी हमले की निंदा करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तानी सत्ता को नकारे जाने का प्रमाण है। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों का पाकिस्तान लगातार दमन कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने जूडो में पहली बार 2 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने जूडो में स्वर्ण पदक जीते। वहीं मुक्केबाजी में 10 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत, जबकि यशवीर सिंह ने कांस्य पदक जीता। तेजस्विन शंकर ने डेकथलॉन में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने अब तक 5 स्वर्ण, 12 रजत और 6 कांस्य पदक सहित 23 पदक जीत लिए हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोंकण, गोवा, केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Greenfield Alluri Sitaram Raju International Airport at Bhogpuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh today. On his arrival at the airport, the Prime Minister was received by Andhra Pradesh Governor S. Abdul Nazir, Chief Minister N. Chandrababu Naidu and other dignitaries. Mr. Modi inaugurated the passenger terminal building and took a walkthrough of the Greenfield Airport. He also reviewed the airport's state-of-the-art passenger facilities and was briefed by officials on its design, advanced technology, master plan and future expansion as an aviation hub. The Prime Minister also witnessed a traditional Timsa dance performed by more than 13,500 tribal women, highlighting the vibrant tribal culture of North Andhra. He then proceeded to the public meeting venue, where he is scheduled to dedicate to the nation, inaugurate and lay the foundation stone for key infrastructure projects and later address the gathering. Later, the Prime Minister will inaugurate Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak at Mysuru in Karnataka. The memorial commemorates the historic visit of one of the greatest spiritual leaders of India, Swami Vivekanand, to Mysuru in 1892, when he met the Diwan of Mysore, Sir K. Seshadri Iyer, and received financial assistance from Maharaja Sri Chamarajendra Wadiyar for his journey to the United States to participate in the Parliament of Religions in Chicago. President Draupadi Murmu has given assent to the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill was passed by Parliament on Thursday. The Act aims to curb unfair practices in public exams by introducing stricter punishments and establishing fast-track courts. It seeks to strengthen transparency, fairness and integrity in the examination system by creating a robust legal framework while protecting the future of the students. Prime Minister Narendra Modi has said that abuse and hatred never solve anything. He appealed for compassion towards the misguided youth who have gone astray, saying they should be guided onto the right path in the spirit of nation building and national interest rather than punished. In a video message posted on his social media handles, the Prime Minister referred to the recent incidents at Jantar Mantar in the national capital, where abusive language was used against him and his late mother. He said, चाइल्ड हिज

0: Childhood is also a phase of learning, making mistakes and correcting them.
1: बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है. एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है. उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे. मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ. समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे. मैं इन बच्चों को कहता हूँ, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े. देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है.
0: India and China will resume border trade through the Nathula Pass in Sikkim today, marking the revival of a key trade route between the two neighboring countries. The resumption of trade will end a six-year suspension that had been placed since 2020 due to the COVID-19 pandemic. The revival of trade is expected to boost cross-border commerce, benefiting registered traders, transport operators and allied businesses. Union Home Minister Amit Shah will present the Lokmanya Tilak Memorial National Award to National Security Advisor Ajit Dobhal at a function in Pune today. The day marks the death anniversary of freedom fighter Lokmanya Bal Gangadhar Tilak and the birth anniversary of social reformer Lok Shahid Anna Bhau Sathe. Various programs are being organized across Maharashtra to commemorate the occasions. And the IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka, South Interior Karnataka, Konkan, Goa, Kerala and Mahi today. It also predicted heavy rainfall over Himachal, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi, West Rajasthan, Bihar and some parts of Northeast India. And that is the end of this news bulletin.

0: পরিকল্পনা উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে। ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ বা অপব্যবহার করার সুযোগ এক্ষেত্রে নেই। এই যে ব্যাপক একটি অভিযান যা আমাদের সংবিধান স্বীকৃত বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে সেন্সাস সফল হোক এই প্রার্থনা করছি।
1: সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সিএএ অনুসারে যারা আবেদন করেছেন তাদের হাতে রাজ্য সরকার নাগরিকত্ব শংসাপত্র তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে এই শংসাপত্র প্রাপকদের হাতে তুলে দেবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে। এদিকে ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর এর সময় নাম্বার যাওয়ার পর যে 27 লক্ষ বিচারাধীন ভোটার ট্রাইব্যুনালে গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে 20 লক্ষ মানুষ ভোটার বা নাগরিক হিসেবে ট্রাইব্যুনালের কাছে দাবি জানাননি বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। ওড়িশায় বন্যা পরিস্থিতি এখনও উদ্বেগজনক। বেশ কয়েকটি নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে অতিক্রম করায় শতাধিক গ্রাম জলমগ্ন। মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি আজ সকালে বন্যা কবলিত ভদ্রক, বালাসোর, জাজপুর ও কেওনঝড় সহ কয়েকটি এলাকা পরিদর্শন করেন, খতিয়ে দেখেন ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ। এদিকে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর আগামী 24 ঘন্টায় রাজ্যের 20টি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ বিশেষ অংশ আরেকবার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ অন্ধ্রপ্রদেশের আল্লুরি সীতারাম রাজু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উদ্বোধন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কারো প্রতি অশালীন শব্দ প্রয়োগ কটুক্তি।
2: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে ফরহাদ নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आंध्र प्रदेश में हैं और वे भोगमरमपुरम में सभा को संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: की विशेषता है कि उन्होंने दो क्षितिजों को छुआ है। एक तरफ ऊंची आसमान को सुने वाली व्यवस्था एयरपोर्ट का निर्माण और दूसरी तरफ मेरे यहाँ के आदिवासी बहनों के द्वारा भीमसा नृत्य का विश्व रिकॉर्ड बनाना। मैं चंद्रबाबू के इस विजन को विशेष रूप से सराहना करता हूँ।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने यात्री टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने 13,500 से अधिक आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक थिमसा नृत्य प्रस्तुति देखी, जो उत्तरी आंध्र की जीवंत आदिवासी संस्कृति को दर्शाती है। श्री मोदी आज राज्य में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
4: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य कठोर दंडों का प्रावधान करने और फास्ट ट्रैक अदालत बनाकर लोक परीक्षाओं में अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम कर दी हैं। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपये हो गई है, वहीं कोलकाता में 2,872 रुपये 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपये 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपये हो गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना

0: Good afternoon. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh. Prime Minister launches projects worth 18,000 crore rupees in infrastructure and energy sectors. In Jammu and Kashmir, second labourer injured in yesterday's terrorist attack in Kulgam succumbs to injuries. Price of 19 kilogram commercial LPG cylinder reduced by about 200 rupees. Flood situation remains critical in Odisha with Mahanadi River continuing to swell, threatening fresh areas. And in Taipei Open Badminton, Tanvi Sharma storms into women's singles final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said, Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and that the centre is fully committed to realising the vision of Swarn Andhra and Viksit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development. Addressing a public meeting after inaugurating the Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram, the Prime Minister said, development projects worth about 18,000 crore rupees, including airport, road and energy infrastructure, reflect the state's fast-paced progress under the NDA governments at the centre and in the state.
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: Mr. Modi described the new airport as the runway for the growth of Andhra Pradesh, particularly North Andhra, and a launchpad for the aspirations of the state's youth. He announced that the airport has been named after freedom fighter Aluri Sitarama Raju, saying the name would inspire future generations with the spirit of patriotism and public service.
1: NDA सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे
0: Mr. Modi said the centre is transforming Andhra Pradesh into a major growth engine through ports, highways, railways and logistics under the PM Gati Shakti National Master Plan. He said railway projects worth nearly 1 lakh crore rupees are under implementation, while more than 70 railway stations are being modernised. The Prime Minister expressed confidence that under the leadership of Chief Minister N. Chandrababu Naidu, Andhra Pradesh would play a major role in achieving the goal of Viksit Bharat 2047.
1: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है जिनकी नींव रखी गई है वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की भी मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। उड़ीसा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में आज अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है।
1: एक समय था जब हवाई उड़ानें सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित थी। एनडीए सरकार में आज छोटे शहर के साधारण लोग भी फ्लाइट से आ जा रहे हैं। 12 इयर्स में सिर्फ एयरपोर्ट की संख्या ही नहीं बढ़ी है, हमारी उड़ान योजना के कारण आज गरीब परिवार के लोगों को भी जहाज में बैठने का अवसर मिल रहा है। इस योजना ने गरीब से गरीब को अपना सपना पूरा करने में मदद की। कुछ दिन पहले ही सरकार ने उड़ान योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की। इस पर भी 29,000 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने इस हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री कर्नाटक के मैसूरू पहुंचेंगे, जहां वे स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।
2: प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन किए जाने वाले विवेका स्मारक स्वामी विवेकानंद के विचार और सिद्धांत के प्रचार कार्य के लिए बनाया गया है। 75 स्क्वायर फीट में फैले इस स्मारक के साथ 4D एक्सपीरियंस सेंटर, प्रदर्शनी स्थान, एम्फी थिएटर, पाठशाला, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्रंथालय, ध्यान और योगा केंद्र भी बनाया गया है। श्री रामकृष्ण आश्रम के ओर से यहाँ शिक्षा के साथ युवाओं को प्रोत्साहित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी।

0: वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2906 रुपए में मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ये एक वर्ष पहले की तुलना में 10.1% अधिक है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। एक रिपोर्ट।
2: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। श्रीनगर से इश्फाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के लिए निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम में संशोधन किया है। इसमें बूथ स्तर के अधिकारी 10 अगस्त तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा अब 17 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 17 अगस्त से 16 सितंबर तक जारी रहेगी, जबकि उनका निपटान 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आयोग ने बताया कि ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर इस समय सारणी में संशोधन किया गया है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पात्र महिलाएं आधिकारिक वेबसाइट dly.delhi.gov.in पर पंजीकरण कर सकती हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने दिल्ली मंत्रिमंडल की इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी इसका ऐलान किया था। वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के नशा मुक्त अभियान नशे से दूरी है जरूरी के दूसरे चरण ने 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इन सभी 5 उपलब्धियों को मान्यता दी है। इस अभियान ने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने 17 लाख से अधिक लोगों को नशा विरोधी ई शपथ दिलाई और 8,534 प्रतिभागियों की मानव श्रृंखला बनाई। रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतोहा खंड पर 976 करोड़ रुपए की लागत से एक से अधिक लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री और माल ढुलाई सेवाओं में वृद्धि संभव होगी। मंत्रालय ने बताया कि परिचालन के पहले वर्ष में इस परियोजना से प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेन और 18 अतिरिक्त मालगाड़ी चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। आयकर विभाग ने बताया है कि वर्ष 2026-27 के लिए 31 जुलाई 2026 तक 59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। सोशल मीडिया पोस्ट में करदाताओं को धन्यवाद देते हुए विभाग ने कहा कि उनका विश्वास और समय पर अनुपालन ही भारत के विकास को गति देने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने आज नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। गोवा स्थित नौसेना अकादमी के 38वें एकीकृत कैडेट पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल एएन प्रमोद जुलाई 1990 में नौसेना में कमीशन हुए थे। 36 वर्ष से अधिक के अपने विशिष्ट करियर में कई पदों पर उन्होंने कार्य किया। दिसंबर

0: 23 से जुलाई 2026 के बीच नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में वे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नौसेना की योजना तैयारी और परिचालन तत्परता में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इससे राज्य में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने राज्य में अधिक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
1: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केंदुझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, केरलम और माहे में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिन बिजली गिरने की स्थिति बनी रहेगी। राजधानी दिल्ली में आज शाम कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में अपनी जगह पक्की की। 17 वर्षीय तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसून को सीधे गेम में हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई है। फाइनल में अब तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन्ह गुएन से होगा। उन्नति हुडा सेमीफाइनल में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उधर ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। बॉक्सिंग में ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन की अगुवाई में 10 मुक्केबाज फाइनल मुकाबले खेलेंगे। अस्मिता डे और हर्ष सिंह के कल जूडो में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने के बाद जूडो खिलाड़ी भी मैदान में उतरेंगे। लॉन बाउल्स में नवनीत सिंह और दिनेश कुमार की पुरुष डबल्स जोड़ी इंग्लैंड के खिलाफ महत्वपूर्ण मैच खेलेगी, विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेगा। खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स और ट्रैक साइकिलिंग में भी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले चार दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। एक और बयान में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। लोग अपने बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय अधिकारों द्वारा गए वायदों को पूरा करने की मांग को लेकर सड़कों पर डटे रहे। इस बीच अमेरिका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्ते प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से कार्रवाई रोकने, मोबाइल संचार सेवाएं बहाल करने और बल के किसी भी गैर कानूनी इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पर व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार 6 वर्षों से रुका हुआ था, इससे 6 साल से ज्यादा समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। भारत और रवांडा ने आपसी व्यापार को बढ़ाने के अपने संकल्प को दोहराया है। नई दिल्ली में हुई भारत रवांडा संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के पहले चरण में दोनों पक्षों ने वस्तुओं और सेवाओं के आपसी व्यापार की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष आपसी व्यापार के दायरे को विविधतापूर्ण बनाने, व्यापारिक संबंधों को आसान बनाने और बाजार तक पहुंच से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने से जुड़ी पहलों पर सहमत हुए। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने रात भर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। ये हमला पूरे यूक्रेन में रूस के बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें 10 नागरिकों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने कहा कि देश सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के

विजयनगरम जिले के भोगपुरम में ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने आधारभूत ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में कल हुए आतंकी हमले में घायल दूसरे मजदूर की मौत। 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपए कम हुई। ओडिशा में महानदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और ताइपे ओपन बैडमिंटन में तन्वी शर्मा महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना और औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आधार आंध्र विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रूपये की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के नागर विमानन क्षेत्र के तेजी से होते विस्तार का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए तलाश अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की की कड़ी निंदा की है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता दी जाएगी। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से रेस्टोरों, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें कम होने के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर का मूल्य अब 2,738 रुपए हो गया है। वहीं कोलकाता में अब वाणिज्यिक सिलेंडर 2,872 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 2,691 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 2,906 रुपए मिलेगा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले महीने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है और ये 2,11,205 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये जुलाई 2025 में 1,83,065 करोड़ रुपए के मुकाबले 15.4% की वार्षिक वृद्धि को दर्शाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू जीएसटी राजस्व 1,44,695 करोड़ रुपए रहा। ओडिशा में महानदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। निचले इलाकों के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है क्योंकि महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रापड़ा और खुर्दा जिलों के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आने की खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और केवंझर जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। भद्रक में कई गाँव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं, सड़कों का संपर्क टूट गया है और संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित है, जिससे हजारों लोग भोजन, पीने का पानी और जरूरी सामान के लिए जूझ रहे हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ताइपे ओपन बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने आज सेमीफाइनल में शानदार जीत के साथ महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। 17 साल की तन्वी ने चीनी ताइपे की हुआंग यू हुसुन को सीधे गेम में हराया, जबकि मुकाबले में अपनी जगह इन्होंने पक्की की। फाइनल में तन्वी का मुकाबला वियतनाम की थुई लिन ग्वेन से होगा। उन्नति हुड्डा सेमीफाइनल में थुई लिन ह्युएन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर।

हो गई हैं। उधर ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत के पास कई पदक जीतने के मौके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के नागर विमानन क्षेत्र की तेजी से होते विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में परिचित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर 166 हो गई है और उड़ान योजना के ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को किफायती बना दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम में आतंकी हमले में घायल दूसरे श्रमिक की आज सवेरे मृत्यु हो गई। इससे मृतकों की संख्या 2 हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायल श्रमिक की मौत श्रीनगर के एक अस्पताल में चिकित्सा के दौरान हुई। कल शाम ईंट भट्टे पर काम कर रहे इन दो श्रमिकों पर अज्ञात आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। घटना के तुरंत बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आतंकवादियों की तलाश जारी है। राज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मजदूरों की हत्या की कड़ी निंदा की है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं कुलगाम जिला प्रशासन की ओर से 6-6 लाख रुपए की तत्काल सहायता भी दी जाएगी। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के सदस्य सरदार उमर नजीर कश्मीरी ने आरोप लगाया कि इन मौतों के लिए सुरक्षा बल जिम्मेदार हैं। कमेटी ने कहा कि मुजफ्फराबाद इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन जारी रहे। इस बीच अमरीका स्थित मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा बल प्रयोग की निंदा की है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपए की कटौती की है। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। ओडिशा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग ने बढ़ाकर इस महीने की 19 तारीख कर दी है। दावों और आपत्तियों के निपटान की समय सीमा भी 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ओडिशा में महानदी में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। निचले इलाकों में कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर राहत कार्यों की समीक्षा की। इस बीच मौसम विभाग ने मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में प्रीति पवार और जैस्मिन लैम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में, वहीं जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में यह पदक अपने देश के नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। ये स्मारक स्वामी विवेकानंद की 1892 में मैसूरू की ऐतिहासिक यात्रा की याद में बनाया गया है, जब उन्होंने मैसूर के दीवान सर के शेषाद्री अय्यर से मुलाकात की थी और शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने के लिए अमरीका की यात्रा के लिए मैसूर के महाराजा श्री चामराजेंद्र वाडियार से आर्थिक सहायता प्राप्त की थी। प्रधानमंत्री ने विवेक स्मारक का भ्रमण किया और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प

0: अर्पित किए। उन्होंने स्मारक में एक पौधा भी लगाया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आज भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीज की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अवशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अवशिष्ट निपटान किया जा चुका है और शेष अवशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अवशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई गई। सिक्किम में नाथूला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलो वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में लगभग 200 रुपए की कटौती की है। नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल विश्वनाथ शर्मा सेवानिवृत्त का आज नई दिल्ली में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनका कल सुबह 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। थल सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज भारत ने 2 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन लेम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीते। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम और जैस्मिन ने 57 किलोग्राम वर्ग में ये पदक हासिल किए। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत 7 स्वर्ण, 14 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 28 पदकों के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre Vivek Smarak in Mysuru. The memorial commemorates Swami Vivekanand's historic visit to Mysuru in 1892 when he met Diwan of Mysore, Sir K. Seshadri Iyer, and received financial assistance from Mysore Maharaja Sri Chamarajendra Wadiyar for his journey to the USA to participate in the Parliament of Religions in Chicago. The Prime Minister was shown around the Vivek Smarak, where he paid floral tributes at the Swami Vivekanand statue. He also

0: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: नमस्कार दोस्तों, 100.1 FM गोल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बाप्या हाजिर हो गई हूँ लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स। तो चलिए शुरुआत करती है इस गाने के साथ।

तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है पचायन क्लासिक्स में दोस्तों। मैं हूँ आपकी अपनी भाभी और आप सुन रहे हैं हमारा आपका हम सबका फेवरेट कार्यक्रम चायन क्लासिक्स। बारिश की एक अलग ही भाषा होती है, कभी एक खिड़की पर दस्तक देती है, कभी मिट्टी की सोंधी सी खुशबू बनकर मन को छू जाती है और कभी किसी पुराने गीत की तरह दिल में उतर जाती है। ऐसी ही एक भीगी भीगी सी शाम में अगर हाथ में चाय का प्याला हो और रेडियो पर सदाबहार नगमे बज रहे हों तो यकीन मानिए जिंदगी कुछ और ही खूबसूरत लगने लगती है। आज की महफिल भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। आज बात होगी उन गीतों की जिन्होंने बारिश को सिर्फ मौसम में नहीं रहने दिया बल्कि उसे प्यार, इंतजार, मिलन और यादों का सबसे खूबसूरत रूप भी बना दिया। हिंदी सिनेमा में बारिश हमेशा से खास किरदार रही है। कभी दो दिलों को करीब लाने का बहाना बनी तो कभी जुदाई के दर्द और गहरा कर दे गई। शायद यही वजह है कि बरसात पर फिल्माए गए गीत दशकों बाद भी उतने ही ताज़ा लगते हैं। और एक दिलचस्प बात जानते हैं, पुराने दौर में बारिश वाले दृश्य फिल्माना आसान नहीं होता था। उस समय आज जैसी आधुनिक तकनीक ही नहीं थी। बड़े बड़े टैंकरों से ऐसी बारिश कराई जाती थी, कृत्रिम बारिश होती थी पाइप के द्वारा। कई बार कलाकारों को घंटों भीगते हुए शूटिंग करनी पड़ती थी, लेकिन जब वही दृश्य पर्दे पर आता था तो उसकी खूबसूरती हर मेहनत को सफल बना देती। और जब बात बारिश के गीतों की हो तो एक गीत तो भाई आती ही है दिमाग में। खैर, बात करेंगे उस गीत के बारे में, पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गाना। और आपके लिए सवाल, आपके लिए आज का सवाल ये है चायन क्लासिक्स में कि बारिश होते ही आपके दिल में कौन सा गाना बजने लगता है, बताइए हमें। वही गाना सुनेंगे आज हम। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ मैं ये सवाल कि बारिश होते ही कौन सा गाना आपके जहन में, आपके मन में, आपके दिल में आता है। तुरंत एक मिनट के अंदर जैसे ही बारिश देखी कि बस वही गाना हमारे अंदर बजना शुरू हो गया, ऐसा कुछ गाना आज होगा, इसी आज होगी इसी पे बातें। तो फिलहाल चलिए सुन लेते हैं अगला गाना, पर आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार ज़रूर रहेगा। वैसे फ़ोन नंबर पता है ना, फिलहाल फ़ोन नंबर है 2213-1341 2213-1341। तो चलिए सुन लेते हैं पहले ये गाना, उसके बाद फिर बातें करेंगे और गाने सुनेंगे। चलिए

0: तो ऐसे में हमारे चाइन क्लासेस के पहले जो लिसनर हैं वो हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए देखते हैं बात करके क्या कहते हैं वो। हेलो,
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाइन क्लासिक्स में। जी मुनिरुद्दीन दा, कैसे हैं? घर परिवार में सब ठीक? चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए, बारिश वारिश हो रही है वहाँ पे?
1: नहीं, अभी तो बारिश नहीं हो रहा है
0: क्योंकि कोलकाता में बारिश हो रही थी कुछ देर पहले।
1: लेकिन क्लाउडी स्काई है।
0: ओके ओके ओके,
1: एनी टाइम हो सकता है बारिश।
0: जी,
1: और बारिश तो हमारे लिए खुदा का एक नियामत है क्योंकि हमारे से फसल फलता है, बारिश के बिना तो नहीं हो सकता है।
0: जी जी,
1: कुछ लोग का क्या बोलता है, कष्ट होता है, लेकिन ये तो होना चाहिए, ये कुदरती तरीका होना चाहिए।
0: जी,
1: और बारिश का जो गाना है,
0: मतलब बारिश होते ही आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके दिल में कौन सा गाना सबसे पहले आता है?
1: धर्मेंद्र और मुमताज का फिल्म है लोफार, उस फिल्म का वो आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, मोहम्मद रफी का गाना सबसे फेवरेट है।
0: ठीक है ठीक है, और ऐसे में किसी को याद करते हुए गाना सुनाना चाहेंगे क्या?
1: नहीं, खास तो नहीं है, सबसे खास है वो मेरा ओनली वन डॉटर आभा। उसके बाद हमारे प्यारे दोस्त आप है और हमारे सोमनाथ घोष भी है हमारे प्यारे दोस्त।
0: ओके ओके ठीक है, चलिए। और
1: बारिश सोने से किशोर कुमार की और एक गाना मेरा याद आता है, आपके सावन रे बेजी दरे झिमली पानी गिरे, ये गाना बहुत अच्छा लगता है। लोपर का गाना सुना दीजिए।
0: ठीक है, चलिए सुनते हैं, हम सब मिलकर सुनते हैं। ओके, बाय बाय। तो दोस्तों, वैसे भी क्या आपने कभी गौर किया कि बारिश में सुना गया कोई गीत हमेशा ज़्यादा अपना सा लगता है? शायद इसलिए क्योंकि बारिश हमारे भीतर छिपी पुरानी यादों को धीरे धीरे जगा देती है। बचपन में कागज़ की नाव, कॉलेज के दिन, पहली मुलाकात या फिर किसी अपने का साथ बिताए हुए कुछ खामोश पल, हर किसी को अपनी एक बारिश होती है। फिलहाल चलिए, जो रिक्वेस्ट किया हुआ गाना है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, वो सुन लेते हैं फटाफट।

0: दोस्तों, मौसम जब बेईमान होता है तो फिल्मकारों ने भी इसका एहसास बहुत ही खूबसूरती से समझा। उन्होंने बारिश को सिर्फ दृश्य नहीं बनाया बल्कि कहानी का हिस्सा बनाया। कई बार बिना एक भी संवाद बोले सिर्फ बारिश और संगीत के सहारे पूरे जज्बात दर्शकों तक पहुंचा दिए जाते थे। हमारे अगले कॉलर से चलिए बात कर लेते हैं, क्या है उनकी राय इस बारे में। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है चैन क्लासिक्स में। जी निशाकर जी, कैसे हैं, सब ठीक ठाक? बस आप लोग की दुआएं, थैंक यू सो मच। तो बताइए निशाकर जी, बारिश होती है तो कैसा लगता है, कैसी फील आती है आपको?
1: আমার সবথেকে প্রিয় ঋতু হচ্ছে বর্ষাকাল।
0: ওকে ওকে,
1: বর্ষাকালে হচ্ছে কি, গরম থাকবে না আবার ঠান্ডাও থাকবে না।
0: জি,
1: তার জন্য বর্ষাকালটা আমার খুব ভালো লাগে। আর ঘরের ভিতরে যদি আমি বসে থাকি, জানলার পাশে বর্ষাকালের অপরূপ দৃশ্য দেখবো, আর হাতের সামনে ভাজা বাদাম থাকবে, আর হালকা একদম নুন দিয়ে ঝুড়ি ভাজা থাকবে।
0: আচ্ছা,
1: আর সেই সঙ্গে আমি মনজিল ছায়ার ছবির লতাদির কণ্ঠে গান শুনবো।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। और किसी को ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं आप?
1: निजेर ना हलो यात्रा जगतेर बर्दा বনমালী পণ্ডিত বাবুকে আমি এই গানটি ডেডিকেট করলাম, সঙ্গে আপনাকে বিশেষ করে আর আমার সকল শ্রোতাদের।
0: ওকে, ঠিক আছে, চলিয়ে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই বাই, মিলতে হ্যায় ফির, বিলকুল মিলতে হ্যায়, চলিয়ে।

0: देखते हैं इस प्यारे से गाने के साथ हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर जुड़ चुकी है। चलिए देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है चायन क्लासिक्स में।
1: नमस्कार, हेलो।
0: हाँ जी,
1: अमीन ठाकुरिया से मौली बोल रही
0: हूं। जी मौली जी, कैसी हैं, घर परिवार में सब ठीक ठाक?
1: अमीन भलो अच्छी, तुम्हें कैमन आछो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू, आप लोग की दुआ है बस।
1: अच्छा, अमीन तो बांग्लाते ही बोल रही
0: हैं। हाँ हाँ, जिसमें कंफर्टेबल है बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: अमीन हिंदी जानी, तो अमीन बांग्ला तो सबसे भलो आछी, अमीन बांगाली सेटा अमीन माने सब समय बोलते हम खूब भलो आछी।
0: बिल्कुल एकदम, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही बताया आपने।
1: तुम्हार वॉइस सुनी है, मैं बुझते पेरेछी तुम्हारे आमी तुम्हार साथे आमी आगे कथा बोलेछी, तुम्हारे आमार खूब भल लागे।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हाँ ना देखे तो किन्तु वॉइस दे आमार खूब भल लागे।
0: थैंक यू।
1: आमी आज के सुनबो जुर्माना छवि लता मंगेशकर के, सावन के झूले पड़े तुम चले आओ।
0: ओके, मतलब बारिश होती है तो आपको सबसे पहले यही गाना सुनना होता है क्या? दिमाग में वही आता है।
1: अरे तुम चले आओ, किंतु मैं तुम्हें ही बोलती
0: हूँ। ओके,
1: थैंक यू। और लगाओ के ना।
0: और बताइए कि आप किसी को डेडिकेट करना चाहती हैं ये गाना?
1: किसी को
0: किसी को ये गाना डेडिकेट करना चाहती हैं आप? किसी को ये गाना आप डेडिकेट करना चाहती हैं? एकदम आ जाएंगे, एकदम कभी ना कभी अगर चांस मिला तो जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच मौली जी बात करने के लिए।
1: थैंक यू,
0: बाय बाय। तो ये थी मौली जी ठाकुरिया से, और सुनना चाहती है सावन के झूले पड़े लता मंगेशकर की आवाज में। तो चलिए हम सब मिलकर सुन लेते हैं ये गाना।

0: 5:50 ऑलमोस्ट हो चुका है और बारिश के रिमझिम फुहारों के बीच आप सबका एक बार फिर से स्वागत है चाइन क्लासिक्स में। मैं आपकी दोस्त बापिया और आज हम उन गीतों की बात कर रहे हैं जिनमें बरसात सिर्फ आसमान से नहीं पर अस्तित्व की दिलों में भी उतरती है। कहते हैं हर मौसम का अपना संगीत होता है, लेकिन बरसात का संगीत कुछ अलग ही होता है। बादलों की गड़गड़ाहट, बूंदों की टिप-टिप और इनके साथ सब जब किसी पुराने गीत की धुन जुड़ जाए तो शाम यादगार बन जाती है। फिलहाल चलिए हमारे अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, देखते हैं कौन है, क्या बोलना चाहते हैं वो। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है चायन क्लासिक्स में।
1: हाँ नमस्कार दीदी।
0: हाँ जी
1: आपका
0: नाम बताएं फिर से।
1: श्यामल कुंडू
0: जी। श्यामल जी कैसे हैं, घर परिवार में सब ठीक ठाक?
1: घर परिवार ठीक ठाक, स्त्री असुस्थ,
0: कोई बात नहीं। हम चाहेंगे हम भगवान से ये प्रे करेंगे, ये मतलब चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए एकदम।
1: रेडियो सुन के स्लिप के पड़े गए, हाथ उठे लेके
0: कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएंगे वो, हम श्योर जल्दी ठीक हो जाएंगे एकदम।
1: दीदी
0: जी
1: बहुत देखते गए आपके सब ग्रामे दिखे
0: एकदम सही बोला,
1: ग्रामे चले आसुन
0: आ जाएंगे आ जाएंगे
1: ग्रामे दिखे आसुन वर्षा देखते। और आपके जो बोलें मोहरा छवि अक्षय कुमार
0: घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपके ही दोस्त हैं। तो आप टिप टिप बरसा पानी सुनना चाहते हैं मोहरा से, है ना?
1: मोहरा से बरसा पानी गाते
0: हैं। ठीक है चलिए चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर। तो सुनते हैं जब जब बरसा पानी, भाई बरसात की बात हो ये गाना ना बजे ये तो हो ही नहीं सकता, है ना।

0: अभी कुछ नहीं करना है, कॉल करना है, और ऐसे में कॉल भी आ चुका है हमारे पास, तो फटाफट बात कर लेते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है चाइन क्लासिक्स में। जी कैसे हैं, सब ठीक ठाक? हेलो हेलो हेलो

0: फिलहाल लगता है दोस्तों कुछ लाइन की खराबी हो चुकी है। हेलो जी हाँ, लाइन की लाइन किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो चुका है। कोई बात नहीं, चलिए वापस से कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर रहेगी, होपफुली। हेलो कोई बात नहीं, फिलहाल समय भी काफ़ी कम है हमारे पास, तो बात करते हैं, बात कर रहे थे हम रिमझिम फुहारों की। और बात जब बारिश की हो रही है तो फिर हम जितना लंबा जाएंगे उतनी बातें होती रहेंगी। फिलहाल अभी समय हो गया 5:55 हमारी स्टूडियो की घड़ी में, और समय है हमारे ब्रेक का। जी हाँ, वही 6 वाले ब्रेक का। न्यूज़, उसके बाद फिर विश्लेषण सुनेंगे आप 6:10 से, और उसके बाद 6:20 से 6:30 तक होगा हमारा आपका समय वापस। तो फिलहाल के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे और सुन लेते हैं आज की परियोजना प्रस्तुति।
1: 100.1 FM Gold Presents परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: तो नमस्कार दोस्तों, आज के परियोजना प्रस्तुति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए एक ऐसा शहर जहां बसें चल तो रही हैं मगर बिना धुएं, बिना शोर और बिना उस ट्रैफिक वाली घुटन के। यही सपना साकार करने के लिए शुरू हुई है प्रधानमंत्री ई बस सेवा। इस योजना का केंद्र बिंदु है शहरों में साफ और भरोसेमंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सरकार कई शहरों में बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक बसें उतार रही हैं, और ये बसें औरों जैसी नहीं, इनका चलना भी हल्का और असर भी गहरा। बस एक सड़क पर आती है और हवा में धुएं के बजाय राह छोड़ जाती है। इन बसों के साथ साथ पूरे शहर में चार्जिंग स्टेशन, मेंटेनेंस सिस्टम और स्मार्ट रूट प्लानिंग भी बनाई जा रही है ताकि सेवा लगातार और आसानी से चल सके। यात्री भी फर्क महसूस करते हैं। एसी, आरामदायक सीटें और समय पर आने वाली बसें सफर को झंझट कम और सुकून ज्यादा बनाती हैं। इस योजना का बड़ा फायदा शहरों को भी मिलता है। ट्रैफिक का दबाव थोड़ा कम, प्रदूषण में गिरावट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इमेज में सुधार, सब एक साथ। ये बदलाव धीरे धीरे ही दिख रहा है पर असर काफी लंबे समय तक रहा है। पीएम ई बस सेवा मूल रूप से वही कोशिश है शहरों को थोड़ा सा साफ, थोड़ा शांत और बहुत ज्यादा सुगम बनाना, जहां सफर भी आसान हो और सांस लेना भी बिल्कुल आसान हो।
1: 100.1 FM Gold Presents परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: फिलहाल चलने का वक्त हो चुका है, ब्रेक लेने का वक्त हो चुका है, तो जाते जाते एक छोटा सा गाना सुनते हुए चलिए हम बढ़ते हैं आगे। जी हाँ, बढ़ते हैं आगे। और क्या क्या गाना है, चलिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार सदैव ऊंचे रहे और उन्होंने शास्त्रों का आत्मसात किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है।
1: मैसूरु भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ की परंपराएं और उत्सव, मैसूरु का दशहरा, यहाँ के भव्य महल, इसका संगीत और साहित्य, भारत की विरासत इस शहर के कण कण में रची बसी है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि हवाई अड्डे, सड़क और ऊर्जा अवसंरचना सहित लगभग 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती है।
1: आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवा कचरा निस्तारण स्थल का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी गई कि 31 जुलाई तक कचरा निस्तारण स्थल पर लगभग 99 लाख मीट्रिक टन अपशिष्ट का निपटान किया जा चुका है और शेष अपशिष्ट को इस वर्ष 15 अक्टूबर तक निपटाने की उम्मीद है। श्री लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। सिक्किम में नाथूला दर्रे से भारत और चीन के बीच सीमा पार व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। मुक्केबाजी में प्रीति पवार ने 54 किलो और जैस्मीन ने 57 किलो में स्वर्ण पदक जीते। 55 किलो में जादुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। इसके अलावा सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉट पुट F57 वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शुभम जोयाल को रजत पदक मिला। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण, 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Swami Vivekanand Cultural Youth Center Vivek Smarak in Mysuru this evening. The memorial commemorates Swami Vivekanand's historic visit to Mysuru in 1892, when he met Diwan of Mysore, Sir K. Seshadri Iyer, and received financial assistance from Mysore Maharaja Sri Chamarajendra Vadiyar for his journey to the USA to participate in the Parliament of Religions in Chicago. Addressing the gathering on the occasion, Prime Minister Modi said Swami Vivekanand truly embodied the spirit of India. He highlighted that the country's youth are driving global growth.
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे. उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था. भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे. उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सरफिरोजी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य समुद्र में मौजूद तेल और गैस संसाधनों की खोज और उत्पादन को नई गति देना, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और इस क्षेत्र में भारत की तकनीकी क्षमता को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिस आधुनिक समुद्र मंथन की परिकल्पना प्रस्तुत की थी, ये योजना उसी विजन को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
2: देश को विकसित बनाने के लिए हम अब समुद्र मंथन की तरफ भी जा रहे हैं। हमारे समुद्र के मंथन को आगे बढ़ाते हुए हम समुद्र के भीतर के तेल के भंडार, गैस के भंडार, उसको खोजने की दिशा में एक मिशन मोड में काम करना चाहते हैं।

0: और इसलिए भारत ने नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन शुरू करने जा रहा है।
1: आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि समुद्र मंथन योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये भारत में अपतटीय तेल और गैस अन्वेषण को किस प्रकार नई गति देगी और आत्मनिर्भर भारत तथा विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ये पहल कितनी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। श्रोताओं, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। विकास की इस तेज रफ्तार के साथ देश की ऊर्जा आवश्यकताएं भी लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन तेल और प्राकृतिक गैस की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आज भी आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और अन्य वैश्विक भू राजनीतिक तनावों ने दिखाया है कि ऊर्जा आपूर्ति में किसी भी तरह का व्यवधान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों को प्रभावित कर सकता है। ऐसे हालात का सीधा असर भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों पर पड़ता है। यही कारण है कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और घरेलू ऊर्जा संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने समुद्र मंथन योजना शुरू की है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं।
2: समुद्र मंथन योजना के तहत समुद्र में बड़े पैमाने पर उच्च गुणवत्ता वाले सिस्मिक यानी भूकंपीय सर्वेक्षण किए जाएंगे। इनसे प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा ताकि संभावित तेल और गैस भंडारों का बेहतर आकलन किया जा सके। इसके अलावा गहरे और अति गहरे समुद्री क्षेत्रों में खोज के लिए ड्रिलिंग को तेज किया जाएगा। सीमांत बेसिनों में वैज्ञानिक ड्रिलिंग भी की जाएगी। योजना में अपतटीय क्षेत्रों से तेल और गैस के उत्पादन तथा उन्हें तट पर लाने के लिए साझा बुनियादी ढांचे के विकास का प्रावधान है। साथ ही एकीकृत ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज जोन स्थापित किया जाएगा ताकि इस क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण और तकनीकी सेवाओं को बढ़ावा मिल सके। समुद्र मंथन केवल अन्वेषण तक सीमित नहीं है, इसमें डिजिटल कार्यक्रम प्रबंधन, नई तकनीकों को अपनाने, क्षमता निर्माण, विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसका उद्देश्य देश में अपतटीय तेल और गैस अन्वेषण तथा उत्पादन के लिए एक मजबूत और एकीकृत व्यवस्था तैयार करना है। इस योजना से 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट यानी MMTOE से अधिक नए हाइड्रोकार्बन भंडार जुड़ने की संभावना है। इससे अपतटीय क्षेत्रों में अन्वेषण गतिविधियों को गति मिलेगी, घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही अन्वेषण और उत्पादन से जुड़े पूरे क्षेत्र में निवेश बढ़ने, उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने और नवाचार के नए अवसर बनने की भी उम्मीद है।
1: श्रोताओं, समुद्र मंथन योजना अपतटीय ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव की शुरुआत है। ये पहल देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने, घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने तथा ऊर्जा क्षेत्र को अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इस निर्णय पर विस्तार से बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम। हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है यानी समुद्र के अंदर जो भारत की राइट्स और प्रिविलेजेस रहती है, उस जोन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, गैस है, ऑयल है, उसका एक्सप्लोरेशन अगर ठीक से किया जाए तो भारत में बहुत कुछ प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, एक है सीज़मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहां पर ऑयल मिलने की संभावना ज्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज्यादा है, एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है और एक बार एक्सप्लोरेशन रेडी होता है देन प्रोडक्शन प्रोग्राम कैन स्टार्ट इन अ मोर साइंटिफिक वे।
1: श्रोताओं, समुद्र मंथन की रूपरेखा जानने के बाद अब ये समझना भी जरूरी है कि ये योजना भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति में इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है और देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं, तेल और गैस के आयात पर निर्भरता तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच समुद्र मंथन किस तरह ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल बनकर उभरता है।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया ने ऐसे कई घटनाक्रम देखे हैं जिनका सीधा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ा, पश्चिम एशिया में तनाव हो या रूस यूक्रेन संघर्ष, ऐसे हालात में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और आपूर्ति दोनों पर असर पड़ता है। इसका प्रभाव भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों पर भी पड़ता है। यही कारण है कि घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना और ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना भारत की ऊर्जा नीति की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी संदर्भ में अब तटीय यानी समुद्र के भीतर मौजूद तेल और गैस संसाधनों का महत्व बढ़ जाता है। भारत के पास लगभग 75 लाख वर्ग किलोमीटर का समुद्री क्षेत्र और विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जहां ऊर्जा संसाधनों की उल्लेखनीय संभावनाएं मौजूद हैं। लेकिन लंबे समय तक इन क्षेत्रों में खोज और उत्पादन अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाया। पिछले एक दशक में सरकार ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। लगभग पूरे अपतटीय क्षेत्र को अन्वेषण के लिए खोलना, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी यानी हेल्प लागू करना, ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी को मजबूत बनाना और डेटा आधारित अन्वेषण को बढ़ावा देना, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण कदम है। इन्हीं सुधारों की अगली कड़ी के रूप में समुद्र मंथन सामने आया है। ऊर्जा सुरक्षा किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है। घरेलू स्तर पर तेल और गैस का उत्पादन बढ़ने का एक बड़ा आर्थिक लाभ ये भी है कि आयात पर होने वाला खर्च कम किया जा सकता है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव का असर कुछ हद तक कम होगा और देश की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। समाचार कक्ष से फरहत नास।
1: श्रोताओं, समुद्र मंथन योजना के विभिन्न पहलुओं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में इसके महत्व को बेहतर ढंग से समझने के लिए आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: पेट्रोल डीजल के मामले में हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी तो बहुत है, लेकिन उसके लिए जो कच्चा माल चाहिए यानी कि कच्चा तेल जो चाहिए वो कितना ज्यादा आपके पास उपलब्ध है। तो अब इन सारी चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए चले, और कहते हैं ना कि समुद्र की गहराई में बहुत कुछ छिपे हुए हैं जो हमें अंदाजा नहीं है, तो इसीलिए जो योजना बनाई गई है समुद्र मंथन की जो 84,000 करोड़ रुपए की, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से की अगर हम बात करें तो आंकड़े, क्योंकि आप अचानक से कहीं जाकर के खुदाई नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में ये स्थिति है, इतनी संभावना है, तब जाकर के आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पूंजीगत निवेश होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 जगह जाकर के आपने निवेश कर दिया और 10 जगह में से कहीं कुछ नहीं निकला। तो दो हिस्से, पहला हिस्सा है कि आंकड़े जुटाने के मामले में और दूसरा हिस्सा जो है एक्सप्लोरेशन के मामले में है। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम 88% कच्चा तेल हम आयात कर रहे हैं, उसमें थोड़ी भी कमी आती है अगर, तो आपको इसका फायदा विदेशी मुद्रा के तौर पे होगा। विदेशी मुद्रा की जो जरूरतें होती हैं उनमें कमी आएगी और वो आपके रुपए पर दबाव को कम करेगा।
1: श्रोताओं, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं के बीच घरेलू संसाधनों के विकास, आधुनिक तकनीक के उपयोग और दीर्घकालिक योजना के साथ आगे बढ़ना समय की आवश्यकता है। समुद्र मंथन योजना इसी दिशा में सरकार का एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है, जिसका उद्देश्य देश की ऊर्जा क्षमता को नई गति देना और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सशक्त आधार तैयार करना है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक थे अरुणदीप सिंह।

0: आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
1: तो दोस्तों चाइन क्लासिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और ब्रेक से पहले श्याम कुमार चंचल जी फ़ोन किए थे हमें भी, लाइन कट गई थी, पर उनका जो रिक्वेस्ट किया हुआ गाना है ना वो हमने निकाल के ज़रूर रखा है। तो फिलहाल श्याम जी आपके लिए ये गाना चलिए सुनते हैं।

वैसे ये बात हो रही थी दोस्तों अचानक क्लासिक्स में कि बारिश हो तो कौन सा गाना आपके दिमाग में आता है। मैं अगर अपनी स्पेसिफिकली बात करूँ तो मेरे दिमाग में तो भाई गज़ल आते हैं, बारिश होते ही कुछ ना कुछ गज़ल मेरे दिमाग में चलता है। वैसे ही एक गज़ल के साथ आज का प्रोग्राम भी यही अंत करने वाली हूँ जी। अचानक क्लासिक्स का आज का अंक बस यही तक। मिलते हैं थोड़ी देर में छाया लोक में जाने अनजाने के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।

0: Good evening and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we do not address stock or company specific queries. You can call us on these numbers 2331 4444, 2371 7117, and 2331 0464. These are Delhi numbers, so listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka abhinandan. श्रोताओं, क्योंकि आज शनिवार है तो इसलिए हर शनिवार की तरह हम आपके फोन कॉल्स पर पूछे गए सवालों को सीधा कार्यक्रम में शामिल करेंगे. आप हमें कॉल कीजिए 2331 4444, 2371 7117 और 2331 0464 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं, वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड भी डायल करें. लेकिन जरूर याद रखें कि किसी विशेष स्टॉक या कंपनी से जुड़ी जानकारी हम इस कार्यक्रम में आपको नहीं दे पाएंगे. आपके प्रश्नों के उत्तर लेकर स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था पर विशेष पत्रकारिता करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा. शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: आप दोनों को नमस्कार, धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस रजिस्टर ओवर 1.6% वीकली गेन. सेंटर रिलीजेस ओवर 1.09 लाख करोड़ रुपीस एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ टैक्स डेवल्यूशन टू स्टेट्स. एंड इंडियाज जीएसटी कलेक्शंस सर्जेस ओवर 2.11 लाख करोड़, मार्किंग 15.4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन जुलाई.
1: इस सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में 1.5% से अधिक की तेजी आई. केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किश्त जारी की. और भारत का जीएसटी संग्रह जुलाई माह में 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक दर्ज किया गया. ये साल दर साल लगभग 15.5% से अधिक की बढ़ोतरी है.
0: And before we begin the program, an important announcement. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, अब जान लेते हैं कि इस पूरे सप्ताह हमारे जो शेयर बाजार हैं उनका रवैया कैसा रहा, उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया. तो श्रोताओं, राष्ट्रीय शेयर बाजार के प्रमुख शेयर सूचकांकों ने इस सप्ताह का समापन मजबूती के साथ किया. फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो क्षेत्र में आई तेजी के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 1.5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई. सेंसेक्स 1,258 अंक बढ़कर 78,094 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 387 अंक बढ़कर 24,883 पर बंद हुआ. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में शुक्रवार को भारतीय रुपया मजबूत हुआ, जिससे स्थानीय मुद्रा में मार्च के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त दर्ज की गई. रुपया हर सप्ताह लगभग 1% बढ़कर 95.38 प्रति डॉलर पर बंद हुआ.
0: Shisha, let's begin with how the markets behaved this week. We are looking at it like Prachi just read, that the markets, both the Sensex and the Nifty, advanced more than 1.6%. What are the factors that have contributed to this rise in the Sensex, in the, both the indices this week?
2: In fact, July has brought very good news for the market as well as for rupee also. I think the performance in the stock market was best among in the last 3 months.
0: Yeah.
2: And one of the reason is like we have seen some kind of disruptions, the second round of war. Now we are seeing some kind of, I mean, the war is now slightly on a back foot. I'm not saying that it has stopped.
0: Yeah.
2: But still there are some indications of peace, and that is giving some confidence to the market also. The second factor which is very important is that now the market is already at a very low level. So it is giving an opportunity for the people to make fresh investment, okay. whether we talk about investors from foreign countries or whether we talk about the domestic one. The third one, the two countries which ruled the market in the month of last week of June and first week of July, South Korea yeah. and Taiwan, now that phase is over.
0: Yes.
2: So those investors are also coming to India, and these are the three factors which has given a good performance in month of July.
1: Shishir, bazaar ki vivechna jari rakhenge, magar usse pehle hamare pehle caller jud rahe hain. Inka naam hai Premjeet aur ye hain Delhi se. Premjeet, karyakram mein aapka abhinandan, kripya apna sawal poochiye.
3: Ji, aap sare team ka abhinandan, pranam, Shishir sahab.
2: Pranam, pranam.
3: Shishir sahab, abhi aaj jo mera prashn hai wo ye hai ki jab मैं चाय के लिए बुलाया गया और उन साहब से उनको चाय दिया और उन्होंने मुझे इंडियन होते हुए पूछा डू यू नो दिस हाँ सर लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही है आप ये हनुमान जी हैं और इनका गदा है श्रीलंका का ये एरिया है जहाँ हम लोग सर्वे कर रहे थे
0: प्रेम जी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका अगर बाजार से जुड़ा हुआ
3: सर्वे का आज के मार्केट पर हम लोगों का हमारे देश का कितना कंट्रोल है सर
0: आप किस सर्वे की बात करें अगर आप थोड़ा सा खुलासा कर सके तो
3: कमोडिटी की मैडम जैसे तेल गैस जो समुद्र में निकलती है ना तो उससे एक सर्वे होती है मैडम जी पहले जहाजों से तो हम उन जहाजों पे काम करते थे तो उस समय वो डाटा आता था तो वो लोग हम इस स्टोरी को हमसे शेयर करते थे तो हमारी उत्सुकता शिक्षित साहब से वही जानने में है
2: जी मैं
3: हमारे पास
2: हाँ समझ गया प्रेम जी जी आप सिस्मिक डेटा की बात कर रहे हैं अगर आप याद करें तो कल जो कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया समुद्र मंथन उसके दो हिस्से हैं और एक हिस्सा उसमें जो है वो है डेटा के कलेक्शन के ऊपर है और दूसरा डेटा दूसरा जो हिस्सा है वो है आपका एक्सप्लोरेशन को तो देखिए कहीं भी आप पूंजी लगाते हैं यानी कि आप कोई मशीन लगा रहे हैं उसके पहले अगर उस जगह की आपको जानकारी नहीं हो तो फिर आपके लिए वो पूंजी जो है वो शायद उतना फ़ायदा आपको नहीं देगी तो ये जो सर्वे किया जाता है जिसके आधार पर तरह तरह के डेटा हासिल किए जाते हैं कि वहां पर क्या कुछ संभावनाएं हैं तेल की या गैस की वो सर्वे काफी अहमियत रखते हैं और इसी वजह से अगर आप समुद्र मंथन योजना के बारे में देखेंगे तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो डेटा और डेटा एक्विजिशन यानी कि कोई और भी एजेंसी अगर सर्वे कर रही है तो उसका ले सकते हैं तो सर्वे की बहुत बड़ी भूमिका है आंकड़ों की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि उसी के आधार पर आप आगे निवेश की रणनीति बनाते हैं
0: जी let's move on to our next story. US stocks rose yesterday to finish a wild July for Wall Street as Amazon leaped, Apple sank, and rising oil prices worsened worries about inflation staying high. The S&P 500 climbed 0.7% after veering between gains and losses through the day. The Dow Jones Industrial Average added 0.5% and the Nasdaq Composite rallied 1%. Shishir, again, I would like a comment from you on the way the US markets, you know, in the, through the month and specifically because just before the month ended, we had the Fed meeting, you know, where they have decided to keep the rates same. And there was also one other, you know, development where the 30-year Treasury bonds, they had hit almost near highs of 2007. So overall, how do you look at the way the markets, US markets were, you know, in the month of July?
2: You rightly mentioned about the Federal Reserve meeting where they kept the interest rate at the same level.
0: Yep.
2: But one of the key concerns, there is a rising inflation. And that inflation is what they call it as the imported inflation because many of the goods which are coming from various other countries, they are brought into the US at a very high tariff because US imposed tariffs on number of countries and now that is going to impact the inflation number. That is why Federal Reserve has kept the interest rate at the same level but they are also giving or they are rather I would use the word they are cautioning that there could be some kind of impact on the interest rate and if it happens, it's not a good news for India because when the US takes any Federal Reserve of US takes a decision on hiking the interest rate, that means the money will flow out from the country.
0: Yes.
2: And that is not a good news for us.
0: Right.
1: और आलोक कुमार हमें join कर रहे हैं श्रोताओं. आलोक जी, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: हेलो
1: जी आलोक जी कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: जी हाँ मैडम, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग।
4: हाँ मैडम, मेरा सवाल ये है ना कि जैसे शेयर मार्केट में जैसे कोई पर्सन आता है तो मुझे थोड़ा जानकारी चाहिए थी कि मतलब मैंने ज्यादा बेस्ट किसी पर्सन के लिए F&O सेगमेंट हो सकता है या फिर डेरिवेटिव जो कैश सेगमेंट होता है जिसमें डिलीवरी लेते हैं या वो ज्यादा बेस्ट है, मतलब क्योंकि मैं नया था तो
2: आलोक जी एक मिनट में रोकूंगा, आप व्यक्तिगत निवेशक हैं या कोई? आप
4: व्यक्तिगत निवेशक हूं मैं, पर्सनल इंडिविजुअल हूं मैं, और क्योंकि मैंने अपना लॉस कर दिया था F&O सेगमेंट में। हालांकि बहुत सारे ब्रोकर्स ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि हम आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे पास डीमैट ओपन कीजिए, हम आपको प्रॉफिट करा के देंगे F&O सेगमेंट में, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट करा के देंगे। अभी कोई मुझे कहता है कि नहीं F&O बहुत डेंजर सेगमेंट है, उसमें मत एंटर कीजिए।
1: नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी, बिल्कुल आलोक जी, हम आपकी बात समझ गए हैं और ये बहुत ही आपने बेसिक, कोई भी जो शिशिर नया निवेशक है उसके मन में यही सवाल होता है कि बाजार में इतनी अनसर्टिनिटीज होती हैं और इतना डर लगता है, इतना भय लगता है कि हमारी जो बचत है, हमारी जो जमा पूंजी है वो कहीं व्यर्थ ना हो जाए। तो आपसे हम अपने बाकी श्रोताओं के भी उपलक्ष्य में जानना चाहेंगे, और आलोक जी तो है ही है, आप बताइए कि किस तरीके से निवेशक बाजार में घुसे, वो SIP अच्छा होगा नए निवेशकों के लिए, वो F&O डेरिवेटिव मार्केट्स अच्छा होगा या कैसे?
2: देखिए, सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से 10 में से 9 निवेशकों ने F&O में पैसा गंवाया है, और पैसा अच्छा खासा गंवाया है। क्यों गंवाया है? क्योंकि F&O या जिसको आप डेरिवेटिव मार्केट भी कह लीजिए, ये बाजार ऐसा है जो कि छोटे निवेशकों के लिए नहीं है, ये बड़े और

0: पैसा लीजिए, घाटा मुनाफा जो भी है उस हिसाब से आप कर का भुगतान कीजिए, कहानी खत्म है। आप यदि कुछ ज्यादा बड़े सौदों में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा जिसकी आपको समझ नहीं है। दूसरी बात, जो एफएनओ मार्केट है वो क्यों लोगों को खींचता है, इसलिए खींचता है क्योंकि लोगों को लगता है मार्जिन पे करेंगे, यानी कि 100 रुपए के माल के लिए 5 रुपए पे करेंगे और हम सौदा कर सकते हैं। लेकिन वो 95 रुपए आप नहीं भी पे कर रहे हैं लेकिन आपके ऊपर वो देनदारी बन जाती है, और वो 5 रुपया दे करके आप सोचते हैं कि हमने बड़ा सौदा कर लिया है, वो उचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आप एक परिपक्व निवेशक है, आपको बहुत अच्छी बाजार की समझ है, थोड़ा सा हिस्सा आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन आप अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, एक आम निवेशक हैं, तो आपके लिए नगद बाजार एक बेहतर विकल्प।
1: लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉल, अगेन कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली, इट्स टिग्रिशिस विद अस फ्रॉम दिल्ली। आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछे।
2: हेलो जी।
1: जी हाँ जी, नमस्ते, अपना सवाल पूछे। जी सवाल पूछे।
2: बैंक में एक जानकारी दी थी कि 50,000 रुपए जमा करके एक एफडी बनती है 444 दिन के लिए, तो ऐसा कोई होता है प्लान?
0: अलग अलग बैंकों की अलग अलग योजनाएं होती हैं कुछ खास समय के लिए, जैसे वो 555 दिन या 444 दिन की योजनाएं बनाते हैं। और अगर जो भी एक जिसको कहें कि हमारे जो 12 सरकारी बैंक हैं या 22 निजी बैंक हैं या फिर विदेशी बैंक हैं, वो इस तरह की योजना लेकर के आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, याद रखिए, कोई असंगठित क्षेत्र से आकर के आपको कहता है कि आप 444 दिन के लिए आप पैसे लगा दो और हम आपको 12% और 15% का ब्याज देंगे, भूल के मत जाइएगा, ब्याज तो छोड़ दीजिए, मूल भी डूब जाएगा।
1: पर शिशिर यहाँ जैसे उन्होंने कहा कि 50,000, तो जहां तक हमारी जानकारी कोई ऐसे कोई खास
0: नहीं, कोई सीमा नहीं होती है। आप इसमें 444 दिन, जैसे अगर मैं गलत नहीं हूं तो कई सरकारी बैंक जो है वो जमा के लिए विशेष अभियान चलाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि आप जब जमा से पैसे आएंगे तभी तो आप कर्ज दे पाएंगे, और कर्ज देने की रफ्तार अभी ज्यादा है, जमा कम आ रहे हैं, तो इसमें एक खास समय के लिए इस तरह के, जैसे कहते ना, आपको याद होगा कि एक खास कंपनी का जो जूता चप्पल होता था वो 99 पे आकर टिक जाता था।
1: बिल्कुल।
0: तो ये हमें कहीं ना कहीं आकर्षित करता है कि अच्छा 333, 444, 555, 666, तो ऐसे जो है ये आपको आकर्षित करने के लिए है। बस वही मैंने कहा कि एक ध्यान रखिए कि आपको कौन आपके लिए प्रस्ताव दे रहा है, एक नियमित सरकारी बैंक या निजी बैंक या विदेशी बैंक या कोई एक असंगठित संगठन, उससे दूर रहें।
3: शशर जी, एक और बहुत ही आधारभूत सवाल मैं आपसे पूछूंगी, जो अमूमन सभी निवेशकों के मन में और खास करके हमारे जो मार्केट मंत्र के जो श्रोता है उनके मन में रहता है, वो ये कि अपना पोर्टफोलियो डिविजन कैसे करें, कितने प्रतिशत, अगर हमारे मान लीजिए मेरे पास 500 रुपए हैं और हम मैं उसमें से कितना पैसा कहाँ पर किस तरीके से डिवाइड करूं कि ज्यादा से ज्यादा जो है मैं अपना एक आउटपुट उस का निकाल पाऊं। हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले अमित झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से। अमित झा, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
0: अमित जी सवाल पूछिए।
3: अमित जी आप हमें सुन पा रहे हैं?
2: हेलो
0: जी, सवाल पूछिए।
2: हाँ नमस्कार सभी को।
0: नमस्कार
2: सिन्हा सर, से मेरा प्रश्न ये सर कि जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग में हम अच्छे स्थिति में तो है सर। हेलो।
0: हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं।
2: लेकिन सर हम उनके जो टेलीकॉम के कंपोनेंट है अभी भी हम चाइना से भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, जबकि सरकार मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए गुजरात है या मध्य प्रदेश है ऐसे जगह पे उन्होंने प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक हम मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट को अपने ही देश में उत्पादन करके पूरे हैंड असेंबलिंग करके हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आएंगे? धन्यवाद।
0: अमित जी देखिए, अभी दो जगहों पर सेमीकंडक्टर, दो या तीन जगहों पर सेमीकंडक्टर का जो है वो प्रोडक्शन शुरू भी हो गया है, और हमें उम्मीद है कि अगले 2 से 3 वर्षों में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे। देखिए, अभी जब ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू हुआ और जिसके बाद मोबाइल हैंडसेट एक से एक बनने लगे, हमारे यहाँ बनना नहीं कहना चाहिए, असेंबलिंग होने लगे, तो वहाँ पर जो कल पुर्जे हैं, हर तरह के कल पुर्जे आप नहीं बना पाएंगे, उसकी एक विशिष्टता होती है, उसकी पेटेंट होती है। जैसे मैं आपको दवा का भी उदाहरण दूं कि हम दवा के मामले में दुनिया के लिए फार्मेसी का हब कहे जाते हैं, लेकिन अभी भी हमें API यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि कच्चा माल है दवा का, वो हमें आयात करना पड़ता है, और निर्भरता कम हुई है लेकिन अभी भी आयात करना पड़ता है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अगले 2 से 3 वर्षों के दौरान जो है हम इनमें से कई कल

0: चीज़ें, और ख़ासतौर पे जो चिप की बात है वो हम अपने यहाँ उत्पादन करना शुरू कर पाएंगे, उसके ऊपर हमारी जो आयात पर निर्भरता है वो खत्म होगी।
1: और हमारे साथ अनुभा एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, इनका नाम है SPS जैन और ये है नोएडा से। बहुत बहुत अभिनंदन आपका कार्यक्रम में महोदय, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार।
2: ये अभी मैं सुन रहा था किसी व्यक्ति ने 444 दिन का एक डिपॉजिट स्कीम के नाम लिया था, तो मैं खास बैंक का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कहिए तो मैं बता देता हूँ, स्टेट बैंक का ये मैं काफी डिपॉजिट रखा हुआ है, आई एम ए सुपर सीनियर, मुझे 7.05 दे रहे हैं, और काफी और दूसरी स्कीम ये SBI का कंप्लीट टोटल सेफ स्कीम है, बस यही मैं आपको क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था।
3: चलिए, आपने ये जानकारी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।
0: हाँ, अब इनका सवाल जो था, चूंकि जैन साहब ने हमारे लिए जो एक धर्म संकट होता ना कार्यक्रम की, एक ऐसी प्रस्तावना है कि हम किसी संस्था का नाम नहीं लेते हैं, तो चलिए जैन साहब ने हमारा धर्म संकट दूर किया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका मूल सवाल था कि कितना पैसा कहाँ रखें,
1: प्रतिशत,
0: हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं। तो जैसे होता ना कि एक पहला फॉर्मूला जो है वो 60-20-20 का है। 60-20-20 क्या होता है कि 60% आप खर्च करते हैं, 20% आप बैंक में रखते हैं ताकि वो एक तरीके से आपको सुरक्षा दे, और 20% आप कहीं ना कहीं निवेश करते हैं। आप कहेंगे बैंक में क्यों रखते हैं और निवेश अलग, दोनों के लिए अलग क्यों रखा गया? क्योंकि बैंक आपके लिए क्या है ना कि आपके लिए एक डिमांड है, आपको जब पैसे की जरूरत है आप ATM से निकालते हैं, जब कोई कहता है ना कि परेशानी और विपदा बता के नहीं आती, तो उसके लिए आपके पास एक ऐसी रकम होनी चाहिए जो एनी टाइम मनी, इसीलिए हम ATM कहते हैं। तीसरा जो 20% है, अब उसकी हिस्सेदारी पे आ जाएं। अब उसमें क्या होता है कि आपकी उम्र क्या है, अगर आप मान लीजिए कि 30 से 40 साल से कम उम्र के हैं, तो आप उसका एक बड़ा हिस्सा, जिसे मैं कहूंगा कि 70% या 60% तक हिस्सा आप शेयर बाजार में लगा सकते हैं। बाकी जो 40% है उसमें से 10% आप सोने में लगाएं, और बाकी जो 30% है वो म्यूचुअल फंड में लगाएं। फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए तो फिर आप 60 को घटाते जाएं, वो आप 50 पे लाएं, 40 पे लाएं, और फिर वहां पर जो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है उसमें आप बढ़ाते जाएं, क्योंकि वो सुरक्षा है। क्योंकि एक उम्र के बाद हमारी कमाई नहीं होती है और हमें नियमित आय की जरूरत है, तो वहां पर हम जाएं, जैसे बैंकों के फिक्स डिपॉजिट है या डाकघर की बचत योजनाएं हैं, उनमें हम लगाएं जिसमें हमारा मूल और ब्याज दोनों सुरक्षित रहे। बैंक और डाकघर में एक बड़ा अंतर ये हो जाता है कि डाकघर में जो आप पैसा रखते हैं उसमें मूल और ब्याज दोनों की गारंटी सरकार की होती है, बैंक में जो आप रखते हैं वहां पर बैंक की गारंटी होती है कि आपको वापस करेंगे, लेकिन अगर बैंक बंद हो जाए तो आपको 5 लाख रुपए तक ही जो है वो प्रति खाते आपको मिल पाते हैं। तो एक हिस्सा अगर आप डाकघर बचत योजना में रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
3: और इस बीच वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर ऑनलाइन विद अस, शंकर इज कॉलिंग अस फ्रॉम भोपाल। शंकर, वेलकम टू मार्केट मंत्र एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: सर नमस्ते मार्केट मंत्र टीम को।
3: जी,
4: इन रीसेंट टाइम्स वी हैव सीन डॉलर, सॉरी रुपीस हैज डिप्रिशिएटेड क्वाइट अ लॉट, एंड इट बैंक डिपॉजिट रेट्स आर नॉट कवरिंग द इन्फ्लेशन। Is there any way or any other option available for retail investor like us who can invest probably in dollar deposit under LRS scheme? LRS scheme mein kya dollar deposit hum log available hai kya Indian resident Indian taxpayer ke liye? Because $2,500 bahar bhej sakte hain, but share khareed sakte hain kya, deposit hum de sakte hain kya, so that we get the benefit of that higher interest, sorry lower interest rate, but dollar appreciation.
0: नहीं, देखिए ऐसा है ना कि आप बाहर जो पैसा भेजते हैं उसमें बहुत सारे के जो है वो तकनीकी जो कहते हैं कि एक जरूरतें होती है वो पूरी करनी होती है, और दूसरी बात है कि आपके पास यहाँ पर भी अगर आप, जैसे मैं अभी प्रोपोर्शन की बात कर रहा था कि कहाँ कहाँ पर कितना रखें, तो अगर आप अपने डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं पोर्टफोलियो को, जैसे आपने आपकी उम्र अगर मान लीजिए कि 50 वर्ष के है, एक निश्चित हिस्सा आप शेयर में, एक निश्चित हिस्सा म्यूचुअल फंड में, एक निश्चित हिस्सा जो है वो बैंक में, और एक निश्चित हिस्सा जो है अगर आप डाकघर की बचत योजनाओं में रखते हैं, तो आप ये जो रिटर्न है ना उसको भले ही ये ना कहें कि हम कहें कि 10% हो जाएगा। दूसरी बात आप ये भी याद रखिए कि बाहर के देशों में ब्याज दर इतना भी ज्यादा नहीं है जो कि आपकी अपनी जो महंगाई दर है उससे वो उसका सामना कर सके। आप ये कह सकते हैं कि डॉलर, तो डॉलर का अगर आप जो बढ़ोतरी का फायदा उठाने की बात करेंगे तो वो आप US में ही रख सकते हैं, और US की जो नियमन है, US की जो व्यवस्था है, उसके लिए आपको बहुत सारे जो तकनीकी पेचीदगी

0: परिस्थितियां हैं उनको आपको पार करना पड़ेगा। तो मेरा आपसे सुझाव इतना ही है कि आप उसको डाइवर्सिफाई कर लीजिए, तो आपके लिए ब्याज दर की जो आप बात कर रहे हैं कि कम मिलता है, वो आपको आप देखेंगे कि आपका बढ़ा है।
1: अन्य खबरों में श्रोताओं, केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किश्त जारी की है। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किश्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक 19,208 करोड़ रुपए मिले हैं, इसके बाद बिहार को 10,845 करोड़ और मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और दिल्ली से हम जोड़ रहे हैं राजेंद्र जी को। राजेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: सवाल मेरा हटके है थोड़ा
1: जी।
2: आज के जो विशेषज्ञ हैं ये मिस्टर शिशिर सिन्हा है
0: जी,
1: जी।
2: तो शिशिर सिन्हा साहब जर्नलिस्ट हैं क्या, मुझे बताएंगे, क्योंकि ये आकाशवाणी पे इंटरव्यू भी करते हैं।
0: आप सवाल पूछे, मेरा जो परिचय है मेरे ख्याल से प्राची ने शुरू में दे दिया था,
1: पत्रकार हैं जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्थिक बीच की पत्रकारिता करते हैं। कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: पढ़ नहीं पाता, देख नहीं पाता हूँ, इसलिए अपनी जानकारी के लिए मैं जानना चाहता था। शुक्रिया
3: जी। Let's move on to the next story. Oil marketing companies have reduced the price of a 19 kilogram commercial LPG from today. After the price cut, the new price of commercial LPG cylinder in Delhi will be 2,738 rupees. The price of a 19 kilogram commercial LPG cylinder in Kolkata is 2,872 rupees and 50 paisa, while in Mumbai it will be 2,691 rupees and 50 paisa, and in Chennai it is going to be 2,906 rupees. According to the Indian Oil Corporation Limited, the new prices for commercial LPG cylinders came into effect from today. This decision will provide relief to restaurants, dhabas, hotels and those involved in the food and beverage business.
1: और पुणे से हमारे साथ कुमार जुड़ रहे हैं। कुमार जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: जी गुड इवनिंग, नमस्कार।
0: नमस्कार
4: जी, मेरा सवाल ये है कि अगर हम कोई नए पर्सन हैं और अगर हमको अच्छी तरह से सीखना है शेयर मार्केट में निवेश किस तरह से करें, तो हम कहाँ से सीख सकते हैं, कौन सा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सीख सके, जैसे कि डेरिवेटिव सेगमेंट हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट हो या डिलीवरी हो या इंट्राडे हो, ये हम किस तरह से सीख सकते हैं, अच्छा कोई प्लेटफॉर्म जहाँ से हम अच्छी तरह से सीख के एक्सपर्ट हो जाए।
0: देखिए कुमार जी, एक्सपर्ट बनने में तो समय लगता है, और दूसरी बात ये कि आप जैसे ही गूगल करेंगे आपके सामने इतने लिंक आ जाएंगे, इतने सारे इन्फ्लुएंसर और जो सो कॉल्ड हमारे एक्सपर्ट हैं वो आ जाएंगे, कि आपके लिए हो सकता है कि सही और गलत के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो मेरा आपसे सुझाव ये है कि कुछ पहले क्या होता है बेसिक, जिसको कहते हैं ना क ख ग ABC सीखना हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा और सस्ता और बिल्कुल मुफ्त में, जिसको मैं कहूँ सस्ता नहीं कहना चाहिए, वो जैसे BSE की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पर भी कई तरीके के इन्वेस्टर एजुकेशन के जो है वहाँ पे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। SEBI की वेबसाइट पे जाकर के इन्वेस्टर मटेरियल्स आप देख सकते हैं, उनको पहले पढ़िए, उनको समझिए कि आप सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है। अगर आप बेसिक समझ जाएंगे और फिर उसके बाद आप जो इतने भी हमारे जो बिजनेस चैनल्स हैं या बिजनेस अखबार है उनको नियमित तौर पर पढ़िए, तो आपकी जब समझ बेहतर होगी तो आप इस मामले में आगे बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञ बनने की बात है, कितना समय लगेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है।
1: और सबसे बड़ी बात कुमार जी कि आप मार्केट मंत्र कार्यक्रम के साथ रोजाना जुड़े रहिए, ताकि आपको रोजाना नई नई अपडेट्स मार्केट्स के मिलती रहे और आप इसी तरीके से सीखते रहें।
3: या दैट्स राइट प्राचीन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST कलेक्शंस इन द लास्ट मंथ विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट राइज टू 2,11,205 crore rupees, marking a 15.4% year-on-year increase from 1,83,065 crore rupees in July 2025. According to the provisional data released by the Finance Ministry, gross domestic revenue stood at 1,44,695 crores, up 10.1% from a year ago. GST collections from imports surged 28.8% to 66,511 crore rupees, providing a boost to the overall monthly mop-up. Moving on.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का युवा अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। कर्नाटक के मैसूरु में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश का युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है और केंद्र सरकार व्यापक अवसंरचना तथा औद्योगिक विकास के माध्यम से स्वर्ण आंध्र और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
1: आज यहाँ करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े।

0: इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को लागू करने में श्री डोभाल की प्रमुख भूमिका रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज भलसवां कचरा निस्तारण स्थल केंद्र का निरीक्षण किया और दिल्ली नगर निगम के अपशिष्ट निपटान कार्यों की समीक्षा की। श्री मनोहर लाल ने नगर निगम को निर्देश दिया कि लैंडफिल साइट पर आने वाले नए अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए हाल ही में आवंटित कार्य में तेजी लाई जाए। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर शुरू हो गया। इसके साथ ही 6 वर्ष से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में सकारात्मक संकेत है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अब तक भारत ने 3 और स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। महिला मुक्केबाजी में प्रीति पवार और जैस्मिन ने स्वर्ण पदक जीते। जदुमणि सिंह ने रजत पदक जीता। सोनम राणा ने पैरा एथलेटिक्स के शॉटपुट F57 वर्ग में स्वर्ण और शुभम जुआल ने रजत पदक जीता। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत और सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 8 स्वर्ण 15 रजत और 7 कांस्य समेत कुल 30 पदकों के साथ 6वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: জিনিসগুলো রিভিল করতে।
1: উল্লেখ্য, বর্ধমান থেকে ধৃত জঙ্গি হামিম বর্তমানে পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। ঝাড়খণ্ডের সাহেবগঞ্জ থেকে ধৃত তার বান্ধবী অর্পিতা সরকারকে আজ বর্ধমান আদালতে তোলা হলে বিচারক 14 দিনের পুলিশ হেফাজত দিয়েছেন। বীরভূমের পলাতক পাথর ব্যবসায়ী শেখ নাজিবউদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের ভাগ্নে শেখ ওয়াসিমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতরাতে নেপাল সীমান্ত লাগোয়া এলাকা থেকে তাকে পাকড়াও করা হয়। কলকাতা মেট্রোর এসপ্ল্যানেড স্টেশন সম্প্রসারণের জন্য আগামী 26 আগস্টের মধ্যে ধর্মতলার বিধান মার্কেট খালি করে দিতে বলেছে পুর কর্তৃপক্ষ। এই মর্মে 528 জন ব্যবসায়ীকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। ব্যবসায়ীদের জন্য মাউন্টেড প্যাডক মাঠে অস্থায়ীভাবে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেরামতির কাজের জন্য আগামীকাল 2 আগস্ট বিদ্যাসাগর সেতু বা দ্বিতীয় হুগলি সেতু আরও এক দফায় বন্ধ থাকছে। সকাল 6টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত এই সেতুতে সমস্ত রকমের যান চলাচল বন্ধ থাকবে বলে কলকাতা পুলিশের পক্ষে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। কবি, লেখিকা তথা মানবাধিকার কর্মী তসলিমা নাসরিনকে আজ কলকাতার রবীন্দ্র সদনে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এরাজ্যে প্রতিটি মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। পাশাপাশি রাজ্যে তসলিমার নিরাপত্তার দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে তিনি নেবেন বলেও শুভেন্দুবাবু জানিয়েছেন। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ডক্টর স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, যে পরিস্থিতিতে তসলিমাকে কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি হবে না। তসলিমা নাসরিন তাঁর বক্তব্যে বলেন, মতের ভিন্নতাই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। তিনি রাজ্যে কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে আসেননি বলেও উল্লেখ করেন লেখিকা। উত্তরবঙ্গে আগামী বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় আগামী 24 ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবের আজ 107তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই উপলক্ষে সকালে ক্লাব তামুতে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যায় নজরুল মঞ্চে এক অনুষ্ঠানে অর্থনীতিবিদ সঞ্জীব সান্যাল ও সঙ্গীত পরিচালক প্রীতম চক্রবর্তীকে ক্লাবের পক্ষ থেকে ভারত গৌরব সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। প্রাক্তন অধিনায়ক বলাই মুখোপাধ্যায় ও তরুণ দেখে দেওয়া হচ্ছে জীবনকৃতি সম্মান। শেষ করার আগে স্থানীয় সংবাদের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। রাজ্য জুড়ে আজ সূচনা হয়েছে দেশের 16
2: জনপদে আকাশবাণী হ্যায়। अब आप जया भारती से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का यह दूसरा सप्ताह था। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से मिला जुला रहा। इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा। हालांकि दोनों सदनों ने लंबी चर्चा के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी प्रदान कर दी। सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस समेत कई विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। इस कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सदन की बैठक 2 बजे शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। शाम 5 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। सदन में हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक बार बार बाधित हुई और 4 बार के स्थगन के बाद शाम करीब 5:15 बजे की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सदन में हंगामा जारी रखा और बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर यही मुद्दा उठाया और मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में बयान दें। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। सदन में हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामे को देखते हुए उपसभापति ने बैठक शाम 5:15 बजे तक और पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। मंगलवार को लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक सरकार के विद्यार्थियों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार जेनजी का भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। विधेयक पर देर रात तक चर्चा हुई जिसमें विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया, चर्चा अधूरी रही। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। वे विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हंगामे के कारण बैठक 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और फिर शून्यकाल शुरू करवाया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। सभापति ने हंगामा जारी रहने पर करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने फिर से गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उपसभापति ने सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था न बनते देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट पेपर लीक के पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर

पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराह्न 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है और सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक के खिलाफ विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वह माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। उसी दिन गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी सदन में पेश किया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित रही। भोजनावकाश के बाद सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन में विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट यानी बहिर्गमन कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टिकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वह सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे प्राप्त होना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद कुछ सदस्यों ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बृहस्पतिवार को लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के शोरगोल के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसके बाद बैठक शुरू होने पर सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। उच्च सदन ने एक दिन पहले ही विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य, व्यक्ति या विचारधारा के खिलाफ नहीं है। इससे पहले द्रमुक सांसदों ने विधेयक का विरोध किया। उधर राज्यसभा में भी हंगामा जारी रहा। शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा किया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदस्यों ने शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजनावकाश के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष
अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल ही में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। विधेयक के समर्थन में भाजपा के ब्रिजलाल ने कहा कि विधेयक यह प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को मात्र 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। जदयू के संजय झा ने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एक अहम कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने कहा कि पहले परीक्षाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास थी, तब इस तरह प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। विधेयक पर हुई लंबी चर्चा के बाद विभिन्न दलों के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ एनटीए ही नहीं बल्कि यूपीएससी रैंकिंग और रेलवे और बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी परीक्षाओं को भी कवर करता है। उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने आसन के निकट पहुंचकर गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबा को देखते हुए कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। विपक्ष के हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: নিজেরাই করে নিতে পারি। সেই জন্য আমি বলবো যে এই ইন্টারনেটের ব্যবহার এবং প্রযুক্তির ব্যবহারটা মানুষের জীবনকে অনেক সহজ করেছে, কারণ আমরা মিষ্টি মানুষরা কিন্তু অনেকভাবে
1: সাহায্য পেয়েছেন। ঠিক ঠিক ঠিক অনিমেষ বাবু। আর আমাদের ফেসবুকের আর একটা কমেন্ট রয়েছে, সেই কমেন্টে বরং চলে যাই। বলছেন যে দীনেশ নস্কর বলছেন যে বাড়ির কাজ, বাড়ির রাজচন্দ্রপুর হাওড়া থেকে তিনি বলছেন, বলছে সুবিধা তো করেছে এবং গোটা পৃথিবীতে কি হচ্ছে সেটাও আমরা জানতে পারছি ড্রয়িং রুমে বসে। খারাপ যেমন করেছে যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মোবাইল হাতে পেয়ে আর কিছুই তারা বোঝে না, জানে না কে কাকে কি বলবে। আমি একটা মোবাইলে আছি এবং খেলে একটা মোবাইলে কে কাকে কি বলবে আমি একটা মোবাইলে আছি খেলে একটা মোবাইলে আছি না, ঠিক কথাটা ঠিক সংযুক্ত নয়, একটু সুন্দর করে লিখলে ভালো হতো। বলছে কে শাসন করবে বলুন তো, খুব মুশকিলে পড়েছি। সুবিধা হয়েছে যে অনেক ঘরে ঘরে বসেই বসে ট্রেন কোথায় আছে, ট্রেন কখন ছাড়বে সেই সব খবরও পাচ্ছি। প্রযুক্তি উন্নতি হোক আমরা চাই, কিন্তু বাচ্চাদের অনেকটাই ক্ষতি করেছে, জানিয়েছেন দীনেশ নস্কর। সময়ের খুব বেশি নেই, আমি আপনার কথা থেকে এই মুহূর্তে বিদায় নেব, কিন্তু ঠিক 9:30 যেটা করব সেটা হচ্ছে বাংলার ক্যানভাস নিয়ে কিন্তু আবার হাজির হব। রয়েছি মৌসুমী আপনাদের সাথে, থাকবো 9:30 থেকে ঠিক 12 পর্যন্ত। 100.1 FM গোল্ড টিউন করেছেন আপনি।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी, केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। 7 भारतीय मुक्केबाज आज फाइनल में खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयां तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था।
4: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है।

0: विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं।
0: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12 वर्षों में करीब 14,000 नए कॉलेज बने हैं। 4,000 से ज्यादा नई ITI बनाई गई। 9 नए IIM, 7 नई IIT और 13 नए MBA स्थापित किए गए हैं। आज देश में MBBS की सीटें करीब 1,40,000 हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 823 हो गई है।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीतारामा राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में NDA सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं।
0: मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, जिनकी नींव रखी गई है, वो सारे प्रोजेक्ट स्वर्ण आंध्रा और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। आंध्र प्रदेश विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा स्रोत बन रहा है। मैं एक बार फिर इन सभी परियोजनाओं के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री कल नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है।
2: बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए स्वीकृत सहायता के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को वित्त वर्ष 2026-27 की पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 44 करोड़ 55 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। वहीं असम के लिए पहली किस्त के रूप में 379 करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जबकि गुजरात को 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिससे वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, उसे दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 193 करोड़ 95 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। वहीं ओडिशा को दूसरी किस्त के रूप में 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित राज्यों में जारी राहत और बचाव कार्यों को और सुदृढ़ करना है। प्रिया मंडल के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। यह राशि राज्यों को हर महीने मिलने वाली किस्त के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर NEET PG 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा 30 अगस्त को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आज महाराष्ट्र के पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने यह पुरस्कार प्रदान किया। श्री शाह ने कहा कि श्री डोभाल ने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
3: भारत की सेना

0: आधुनिक बनाना, समसामयिक परिवर्तन करना, सेना के अंदर टेक्नोलॉजी और वीरता दोनों का एक अद्भुत फाइन ट्यूनिंग करना, कई प्रकार के बड़े फैसले अजीत जी के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं।
1: दिल्ली भाजपा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ संसद परिसर में कल धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि संसद परिसर के मकर द्वार के पास हुए प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने धार्मिक आस्था का मजाक उड़ाया, सनातन संस्कृति का अपमान किया और संत समाज का अनादर किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। एक रिपोर्ट।
2: पूर्वी सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित नाथुला दर्रा सदियों से भारत को तिब्बत से जोड़ने वाले पुराने व्यापार मार्ग का एक प्रमुख हिस्सा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ सीमा व्यापार 2006 में औपचारिक रूप से फिर से शुरू हुआ। 2020 में कोविड महामारी के कारण रोके जाने तक ये बिना किसी रुकावट के जारी रहा। इसका फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। सीमा व्यापार सोमवार से बृहस्पतिवार तक चलेगा। इसमें गेट सवेरे 7:30 बजे खुलेंगे और हर रजिस्टर्ड व्यापारी को हर दिन 2,00,000 रुपए तक का व्यापार करने की अनुमति होगी। गंगटोक से मैनाक चटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: बलूच यकजहती कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे जन आंदोलन पर पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। समिति के अनुसार यह दमनकारी रवैया असहमति की आवाजों को कुचलने की व्यापक सरकारी नीति का हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, केरलम, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8,00,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,59,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। केरलम में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन और जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग ने आज 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश से 6 लोगों की मौत हो गई। प्रभावित जिलों में 65 राहत शिविरों में 1400 से अधिक लोगों को पहुंचाया गया है। और अब ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल की खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक देश के नाम किए। मुक्केबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रीति ने महिलाओं की 54 किलोग्राम प्रतियोगिता में कनाडा की स्कारलेट सवाना डेल गाडो को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में माइकेला वॉल्श को 5-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में जादूमणि सिंह ने रजत पदक जीता।
4: अच्छा लग रहा है, मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल आया तो काफी खुश। अगला कंपटीशन में से और ज्यादा फोकस करूंगा और अच्छा आने वाला कंपटीशन में अच्छा मेडल लेऊं। मेडल मैं मेरे अंकल को दे दे करूंगा और BFI को, साई को और पूरा इंडिया जो हमारा टीम कोचेस है उन सबको दे दे करूंगा।
3: दिन का तीसरा स्वर्ण पदक आज एथलेटिक्स से आया जब सोनम राणा ने पुरुषों के शॉटपुट F57 वर्ग में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। शुभम जुयाल ने

0: रजत पदक जीता। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने रजत पदक अपने नाम किया। सेल्वा प्रभु तिरुमरन ने कांस्य पदक हासिल किया।
1: इसके अतिरिक्त 7 भारतीय मुक्केबाज भी आज फाइनल में खेलेंगे। वॉल्ट फाइनल में देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार की चुनौती होगी। 5000 मीटर दौड़ के फाइनल में गुलवीर सिंह ट्रैक पर उतरेंगे। मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले फाइनल में भारतीय टीम खेलेगी। जम्मू और श्रीनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बंद होने के कारण रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बडगाम और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष सेवा सड़क संपर्क बाधित होने से प्रभावित यात्रियों को राहत देने और कश्मीर तथा जम्मू के बीच सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का शुभारंभ किया। उन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल में हुई प्रगति का श्रेय युवाओं को दिया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की अग्रिम राशि जारी की। भारत और चीन ने सिक्किम के नाथुला दर्रे से सीमा पार व्यापार फिर से शुरू किया। ओडिशा में बाढ़ का प्रकोप जारी। केरलम में लगातार बारिश से तबाही, 6 लोगों की मौत। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में जैस्मिन लैम्बोरिया तथा प्रीति पवार ने और पैरा एथलीट सोमन राणा ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Swami Vivekanand Cultural Youth Centre in Mysuru. Credits Indian youth for progress in science, technology and sports. Prime Minister launches development projects worth 18,000 crore rupees in Andhra Pradesh. Centre approves advance release of over 2,000 crore rupees as assistance to flood-affected states. India and China resume cross-border trade through Nathula Pass in Sikkim. Flood fury continues in Odisha, 6 people killed in Kerala as incessant rain causes widespread havoc. And in Commonwealth Games, boxers Jasmine Lamboria and Preeti Pawar win gold medals. Para-athlete Soman Rana bags gold in men's shot put F57. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the areas of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Centre, Vivek Smarak, in Mysuru today. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
3: Swami Vivekanand ji युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
2: Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges, including ITIs, IIMs, IITs, AIIMS and increasing medical seats as well.
3: पिछले 12 वर्षों में 650 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटीज बनी है। पिछले 12

0: দশ মিনিট পরে ফিরছি বাংলার ক্যানভাস নিয়ে। মৌসুমে রয়েছি 100.1 FM গোল্ডে, কথা হচ্ছে আপনাদের সাথে কলকাতার বাংলার বিভিন্ন অলিতে গলিতে খাবারের দোকানের কথা, যা কিনা বহু বছর ধরে বাঙালির রসনা তৃপ্তি করেছে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে রবি কাপুর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নে কাহা হে কি ভারত কে যুবাওঁ নে বিজ্ঞান প্রৌদ্যোগিকী আর খেল সহিত কই ক্ষেত্রো মে দেশ কো নই উঁচাইয়ো তক পৌঁছায়া হে। শ্রী মোদী নে কাহা কি আজ ভারত কে যুবা বিশ্ব কে তীসরে সবসে বড়ে স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম আত্মনির্ভর ভারত আর মেক ইন ইন্ডিয়া অভিযান কা নেতৃত্ব কর রহে হ্যাঁ। কর্ণাটক কে মেসুরু মে স্বামী বিবেকানন্দ সাংস্কৃতিক যুবা কেন্দ্র বিবেক স্মারক কা উদ্ঘাটন করতে হুয়ে শ্রী মোদী নে ইয়ে বাত কহি।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा ভারত কি ডিজিটাল ইকোনমি কো আগে বড়া রাহা হ্যায়।
1: প্রধানমন্ত্রী নে কাহা কি স্বামী বিবেকানন্দ কা সপনা যুবাওঁ কো রাষ্ট্র নির্মাণ কে লিয়ে তৈয়ার করনা থা। প্রধানমন্ত্রী নে কাহা কি পিছলে 12 বর্ষো মে সরকার নে শিক্ষা কে ক্ষেত্র মে বড়ে বদলাব কিয়ে হ্যায়।
2: পিছলে 12 বর্ষো মে 650 সে জ্যাদা নই ইউনিভার্সিটিজ বনি হ্যায়। পিছলে 12 বর্ষো মে করিব 14,000 নয় কলেজ বনে হ্যায়। 4,000 সে জ্যাদা নই ITI বনাই গই। 9 নয় IIM, 7 নই IIT আর 13 নয় MBA স্থাপিত কিয়ে গয়ে হ্যায়। আজ দেশ মে MBBS কি সিটে করিব 1,40,000 হো চুকি হ্যায়। মেডিকেল কলেজো কি সংখ্যা বড়কর 823 হো গই হ্যায়।
1: श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार आज फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 12 स्वर्ण, 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ

चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुधंती चौधरी और सचिन सिवाच ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने आज कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने का अवसर दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि 18,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं केंद्र और राज्य में एनडीए सरकारों के नेतृत्व में राज्य की तेज प्रगति को दर्शाती हैं। सिक्किम में नाथुला दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया है। इसके साथ ही 6 साल से अधिक समय से चल रहा व्यापार निलंबन समाप्त हो गया है। व्यापार का फिर से शुरू होना भारत और चीन के बीच आपसी संबंधों में एक सकारात्मक संकेत है। गृहमंत्री अमित शाह ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता देने के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के केंद्रीय हिस्से की अग्रिम राशि के रूप में 2,117 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। बाढ़ प्रभावित 7 राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से कटक, पुरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खुर्दा जिलों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हीराकुंड बांध से 22 फाटकों के माध्यम से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। 10 निचले जिलों में हाई अलर्ट जारी है। 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,69,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी और अन्य संगठनों को मिली विदेशी फंडिंग की जांच शुरू कर दी है। गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि जांच की जा रही है कि विदेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल कैसे किया गया, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी समानांतर जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राशि का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया गया है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। प्रधानमंत्री ने मुक्केबाजी स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीतने पर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनका प्रदर्शन लगातार उल्लेखनीय रहा है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण 16 रजत और 8 कांस्य पदकों सहित कुल 36 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुधंती चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहेन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में नामीबिया के ट्राइगेन मॉर्निंग ज्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। आज रात ही नरेंद्र बेरवाल पुरुष 90 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में इंग्लैंड के दमार थॉमस से मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekananda Cultural Youth Centre, Viveka Smaraka, in Mysuru yesterday. The PM emphasized that Swami Vivekananda's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building. Mr. Modi further said the capabilities of our youth has transformed India into the second largest mobile phone market. New strides are being made in semiconductor manufacturing, innovations and in private sector space missions. Moreover, Mr. Modi underscored the progress achieved in the last 12 years in the field of education by establishing new universities and colleges including ITIs, IIMs, IITs, AIMS and increasing medical seats as well. Delhi BJP yesterday lodged a complaint against leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi. Independent MP Rajesh Ranjan, alias Pappu Yadav, SPMP Avdhesh Prasad and other concerned individuals for allegedly hurting Hindu religious sentiments in the parliament complex yesterday. The BJP delegation led by New Delhi MP Bansuri Swaraj demanded registration of an FIR against the opposition leaders. Ms. Swaraj alleged that the opposition has mocked the faith of Hindus, ridiculed Sanatan culture and insulted the saint community during the protest held near the Makar Dwar of the parliament complex. Ms. Swaraj asserted that such actions would not be tolerated. The Baloch Yakjehti Committee yesterday strongly condemned the atrocities by Pakistani authorities against the ongoing public movement in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, noting that the crackdown reflects a broader pattern of suppressing political dissent across Pakistan. In a statement posted on social media, the committee slammed Pakistani security forces of resorting to direct firing on protesters, arbitrary arrests of political activists, and targeting civilians instead of engaging in dialogue with demonstrators. The statement comes amid continuing unrest in POJK, where protests over political and governance-related issues have intensified in recent weeks, with more than 50 people killed and hundreds injured. India climbed to fourth place in the Commonwealth Games medal standings in Glasgow, with a total of 37 medals, including 13 gold, 16 silver and 8 bronze. In boxing, India delivered a stellar performance, winning 7 gold medals. The latest came from Ankush Panghal, who defeated England's Dimeji Sheetu 4-1 in the men's 80 kg final. Earlier, Sachin Sivach won the men's 60 kg gold, edging past Namibia's try again Morning the Velo by a 3-2 split verdict. The other Indian gold medalists were Jasmine Lamboria, Preeti Pawar, Sakshi Chaudhary, Priya Gangas and Arundhati Chaudhary. However, Indian boxers Lovlina Borgohain and Jadumani Singh settled for silver medals. Preeti claimed the women's 54 kg boxing title with a commanding 5-0 victory over Canada's Scarlett Delgado. Jasmine, the reigning world champion, secured another 5-0 win in the women's 57 kg final, defeating Michaela Walsh of Northern Ireland. Sakshi then beat Ruby White of England in the women's 51 kg final 5-0 to win. It was a harder final bout for Priya, who beat Marie Bethol Al-Hamdiye of Canada 4-1 in a split verdict in the women's 60 kg final. Arundhati Chaudhary also defeated Chantelle Reed of England in the women's 70 kg final. India also celebrated a historic achievement in para-athletics, with Soman Rana winning gold and Shubham Jewel taking silver in the men's shot put F57 event. This result marked India's first ever Commonwealth Games gold medal in the men's shot put F57 event and the nation's first double podium finish in the category. In other athletics events, triple jumper Praveen Chitravel won silver, while Silva Prabhu earned bronze. On the judo mat, Unnati Sharma advanced to the women's 63 kg semifinals after defeating New Zealand's Kuona Christie. Karanjit Singh Mann advanced to the men's 90 kg quarterfinals, defeating New Zealand's Elliot Connolly by Ippon in 3 minutes 29 seconds. His next opponent in the last 8 stage will be Canada's Guillermo Guerlain. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and PM Modi have extended congratulations to Indian boxers and athletes for their stellar performance at the Glasgow Commonwealth Games. And that is the end of this news bulletin.